0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लगे थी, हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो। पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम, अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾी अवां खे रेडियंट लुक, रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट। हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एज ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप। वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
0: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।
2: छा तव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो?
3: त पोइ GFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
2: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
3: ऐं हा, ॻोठनि, शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
2: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
3: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
2: 0331252578 6।
3: जी हा, 2131525786।
2: GFM रेडियो नेटवर्क
3: सिंध जो आवाज़।
4: آشنا اپنی حقیقت سے ہو اے دہقان ذرا، دانا تو، کھیتی بھی تو، باراں بھی تو، حاصل بھی تو، آہ کس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے، راہ تو، رہ رو بھی تو، رہبر بھی تو، منزل بھی تو۔

हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 मिंटन ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

पटिया के इलाके स्पिन कारेज में कोयले के खान में धमाके सबब चोटी पोहित फोत खान में फाथल अठ जणन के बचाने ला रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। पीडीएम में इख्तियारन जो चवण है त खान मां वधीक छह मजदूरन जा लाश बाहर कढ़िया विया आहिनि। फोतिन जो अंग वधी चोटी थी वियो आहे। धमाके वक्त 42 मजदूर खान अंदर मौजूद हुआ। सूबाई वजीर मैदनियात शोएब शोरवानी चयो आहे त डुखे हालतन बावजूद रात देर तई रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहो। खान अंदर फाथल बेन पोरेतन के भी बाहर कढ़ियो वियो। साने में कंहिंजी भी गलती या कोताही साबित थी त सख्त सजा डि॒नी वेंदी। बलोचिस्तान सरकार पारां हादसे में फोत थियल मजदूरन जे वारसन खे मुआवज़ो डि॒यण जो ऐलान। फोत थियल मजदूरन जे वारसन खे 5-5 लख ऐं जख़्मीन खे 3-3 लख रूपया मुआवज़ो अदा कयो वेंदो। बोर्ड ऑफिस में हमास ऐं ॿियनि वेड़ाक तंज़ीमनि पारां हथियार फिठा करण ऐं इसराइली फ़ौज जे गज़ा मां मरहले वार निकाली वारो मुआहिदो थी वियो आहे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रम्प जी दावा। सदर डोनाल्ड ट्रम्प चयो आहे त जीअं ई हमास हथियार फिठा कंदो इसराइली फ़ौज गज़ा खां ॿाहिरि वेंदी। मुआहिदो नई फ़लस्तीनी हुकूमत जे क़याम लाइ अहम अगभराई आहे। मुआहिदे ते मुंज़िम तरीक़े सां मरहले वार अमल दरामद कयो वेंदो। आलमी इस्तेकाम फोर्स फलस्तीनी फोर्स सां गॾिजी ज़िमेवारियूं संभालींदी। हमास सरंगिन नेटवर्क हथियार जो ज़खीरो ऐं हथियार ठाहिण वारो मशीनरी ऐं हंध तबाह करण समेत फ़ौजी ढांचो ख़तम कंदी। अमेरिकी इख़्तियारनि जो चवण आहे त गज़ा में फलस्तीनी अथार्टी ऐं हमास जे मुतबादल तौर टेक्नोक्रेट हुकूमत जो क़याम ग़ौर हेठि आहे। मुआहिदे ते अमल दरामद कुझु हफ़्तनि में शुरू थींदो। इहो न समझो त इलेक्शन खे चोरी करण ॾींदासीं। कश्मीर में असांजो मैंडेट चोरी थियो त वफ़ाक में तव्हांजे उबती ॻणप शुरू थी वेंदी। इंसाफ़ कंदव त इंसाफ़ थींदो, धांधली कंदव त तव्हांजो बि ख़ैर नाहे। मीरपुर इलेक्शन में धांधली जूं वीडियोज़ बि साम्हूं आयूं। अफ़सोस आहे जो सबूत ॾियण बावजूद इलेक्शन कमीशन नोटिफिकेशन जारी करे छॾियो। पीपल्स पार्टी जे चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो मुज़फ़राबाद में चूंड जलसे खे ख़िताब। बिलावल भुट्टो चयो आहे त हू पीटीआई जा मम्मी डैडी वारा नाहिनि, हुननि वटि जियाला मौजूद आहिनि। अहिड़ा जियाला आहिनि जन ज़िया तोणे मुशरफ़ जो मुक़ाबलो कयो ऐं ही सभु शींहं जे शिकार जा माहिर थी चुका आहिनि। पीटीआई दोस्तनि खे बायकाट वारी सियासत छॾण घुर्जे। आज़ाद कश्मीर असेंबली बि पाकिस्तानी रियासत खां ट्रुथ कमीशन जो मुतालबो कयो आहे। एतिराज कंदड़ कमीशन क़बूल कनि, इनशाला नसीब थींदो। वफ़ाक़ी घरू वज़ीर मोहसिन नक़वी मुल्क जे समूरनि मसइलनि जो हल नवनि सूबनि खे करार ॾेई छॾियो। इस्लामाबाद में इकोनॉमिक समिट खे ख़िताब कंदे मोहसिन नक़वी चयो त केरु मञे या न मञे असांजो निज़ाम तबाह थी चुको आहे। जेसिताईं नवां सूबा या यूनिट्स न ठहंदा तेसिताईं शयूं ठीक न थींदियूं। एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स सूबा या जेको बि नालो ॾियो उनखे अवामी सतह ते खणी वञणो पवंदो। आम माण्हू नंढे नंढे शयुनि लाइ धिका खाई रहिया आहिनि। ज़रई मुल्क हुजण बावजूद कणक ॿाहिरां घुराइणी पवे थी। नौजवाननि जो रुगो हिकु मुतालबो आहे त खेनि मेरिट ते मोकिया ॾिना वञनि। हाणे हर सूरत में खेनि मोकिया ॾियणा पवंदा। नवां चओ या काकरोच ही गॾिजी उथी पया त सभु कुझु ऊंधो थी पवंदो।

0: बचाव वारे वज़ीर ख्वाजा आसिफ चयो आहे त संदसि ज़ाती राय आहे त कराची ऐं गवादर वफ़ाक़ जो हिसो हुजण घुर्जनि। सूबनि में इंतज़ामी यूनिट्स डी जी खान खे ॿिए शहर सां मिलाए सघिजे थो। लसानी बुनियाद ते सूबा ठाहिया वेंदा त नओं पिंडारो बॉक्स खुलंदो, नवां इंतज़ामी यूनिट्स ठाहिण पाकिस्तान लाइ सुठो हूंदो। पाकिस्तान में ईंदड़ चूंडूं नए स्ट्रक्चर तहत थी सघनि थियूं। पीपल्स पार्टी जे अॻवान नियर बुखारी चयो आहे त सूबनि जे हदनि में फेरफार लाइ सूबाई असेंबलीअ में ब भाङे टे अक्सरियत सां ठहराउ मंज़ूर थियण ज़रूरी आहे। ख्वाजा आसिफ पहिरियां पंहिंजी काबीना ऐं वज़ीर आज़म सां ॻाल्हाए, वज़ीर आज़म वटि इहा ॻाल्हि आई त इहो पीपल्स पार्टीअ सां ॻाल्हाईंदो। सिक्योरिटी फोर्सेज जो हज़दार में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन फितनाल हिंदुस्तान जा चार खारजी दहशतगर्द मारिजी विया। ISPR मौजूब मारिजी वियल खारजी दहशतगर्दनि वटां वॾे अंग में हथियार ऐं बारूदी मवाद हथ आया। ऑपरेशन दौरान बारूदी मवाद सां भरियल ॿिनि गाॾियुनि खे पिण तबाह कयो वियो आहे। इलाइक़े में ॿियनि दहशतगर्दनि जी ॻोल्हा लाइ क्लियरेंस ऑपरेशन जारी आहे। अज़म इस्तक़ाम तहत दहशतगर्दनि जे मुकमल ख़ात्मे ताईं ऑपरेशन जारी रहंदो।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GAFM 88 नेटवर्क। GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
4: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
3: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुन जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद
4: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताईं मरीजन जो इलाज कंदी।
3: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
4: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3141-230।
5: कैश ऐं किस्तन ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ ख़ुशख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
6: ख़ुशख़बरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण, औरतनि जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण, बांझपन।
3: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। यादि रख, निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT, लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी, मोबाइल नंबर 2301-43-842।
7: खुशखबरी खुशखबरी साफ ऐं शिफ़ा पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत
8: अवां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड
7: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर 500 मिलीलीटर 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल
8: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे
7: हुन खां अलावा असां वटि रिफल जी सहूलियत पिणु सस्ते अॻिते मौजूद आहे
8: अव्हां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे
7: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार शादी ऐं ॿियनि तकरीबन लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिणु मौजूद आहे वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920
8: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर वेझो सोनेरी बैंक बदीन रोड मातली छा तव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो
5: त पोइ जीए एफ एम 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो एफ एम रेडियो आहे
8: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल
5: ऐं हा ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो जीए एफ एम मातली बदीन
8: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
5: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
8: 03125252786
5: जी हा 2315525786
8: जीए एफ एम रेडियो नेटवर्क
5: सिंध जो आवाज़
9: Hi, hi, hi.

0: आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा, यह है मोहब्बतो यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: खूबसूरती है जो असल राज, सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इन में मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ बिंदीहन में। डार्क स्पॉट्स के करे खत्म और दिए कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर डी जो शो। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितियूं लॻाइण लाइ ख़ुशख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितियूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितियूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435, एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
3: खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो जातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं, सलीम कॉलोनी, टंडो गुलाम अली रोड, मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा, CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण, औरतन जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण, बांझपन।
4: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा, MBBS रेडियोलॉजी, अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी, हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। याद रखे निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT, लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी, मोबाइल नंबर 2301-43-843-842।
5: खुशखबरी, खुशखबरी, साफ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
6: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो, मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड,
5: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल,
6: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
5: हुन खां अलावा असां वटि रिफल जी सहूलियत पिणु सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
6: अव्हां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे, अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्यालु रखंदे,
5: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार, शादी ऐं ॿियनि तकरीबन लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
6: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
7: अमड़ सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
8: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
7: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद,
8: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदी।
7: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि, हीअ में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
8: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
9: छा अव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो?
10: त पोइ GFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
9: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
10: ऐं हा, ॻोठनि, शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
9: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
10: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
9: 03312525786।
2: जी हाँ, 2315525786
9: GFM रेडियो नेटवर्क
2: सिंध जो आवाज़।

0: आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
1: केश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरन जो पक्यू छितू लगरा लाए खुश खबरी चाहियो था अवां जे घरन जो छितू पक्यू हुजन त केश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितू लगरायो सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लगराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख्श होसो मोबाइल नंबर 03002962435 एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली
2: खुशखबरी अवांजे पंहिंजे शहर मातली में अवांजो जातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी औलाद जो न थियण औरतन जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण बांझपन
3: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी यादि रख निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी खिदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी मोबाइल नंबर 2310 31 43 842
4: अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM
5: 90.4 जाहिर नहीं दो कर लिखण में थे न कोताही लिखण में थे न कोताही।

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: कोटिया के इलाके स्पेन कॉलेज में कोयले की खान में धमाके सबब 34 पोरे दबजी फोत खान में फाथल 8 जणन के बचाण ला रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। पीडीएम में इख्तियारन जो चवण है ते खान मां वधिक 6 मजदूरन जा लाश बाहर कढ़ाया वया हन। फोतिन जो अंग वधी 34 थी वयो है। धमाके वक्त 42 मजदूर खान अंदर मौजूद हुआ। सूबाई वजीर मदनियात शोएब नौशेरवानी चयो है ते दुखियन हालतन लाए रात देर ताई रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहो। खान अंदर फाथल बेन पोरेतन के भी बाहर कढ़ो वेंदो। साने में कहीं जी भी गलती या कोताही साबित थी तो सख्त सजा दिनी वेंदी। बलोचिस्तान सरकार पारा हादसे में फोत थियल मजदूरन के वारसन के मुआवजो लेने जो ऐलान। फोत थियल मजदूरन के वारसन के 5-5 लख जख्मियों के 3-3 लख रूपया मुआवजो अदा कयो वेंदो। बोर्ड ऑफ पीस में हमास ए बेन वेड़ाक तंजीमन पारा हथियार फिटा करण इसराइली फौज के गजा मां मरहलेवार निकाली वारो मुआहिदो थी वयो है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की दावा। सदर डोनाल्ड ट्रंप चयो है त जिए ही हमास हथियार फिटा कंदो इसराइली फौज का बाहर निकरी वेंदी। मुआहिदो नई फलस्तीनी हुकूमत के कयाम लाए अहम अगवराई है। मुआहिदे ते मुंजिम तरीके से मरहलेवार अमल दरामद कयो वेंदो। आलमी इस्तेकाम फोर्स फलस्तीनी फोर्स से गडजी जिम्मेवारियों संभालींदी। हमास सुरंगन जो नेटवर्क हथियारन जो जखीरो हथियार ठाण वारो मशीनरी हंग तबाह करण समेत फौजी ढांचो खत्म कंदी। अमेरिकी इख्तियारन जो चवण है त गजा में फलस्तीनी अथॉरिटी हमास के मुतबादल तौर टेक्नोकैरेट हुकूमत जो कयाम गौर हेठ है। मुआहिदे ते अमल दरामद कुछ हफ्तन में शुरू थींदो।

0: ईरान जो कुवैत में अमेरिकी स्टेट जगहंदन ते ड्रोन ज़रिए निशानो बणण जी दावा। ईरानी फौज चयो त कश्मीर ते रहायशी इमारत ते अमेरिकी हमले जे रद अमल में अमेरिकी वेड़ाक जाल जे मसावलाती निज़ाम ऐं गदामनि खे निशानो बणायो। ईरानी पार्लियामेंट जे स्पीकर बाकर कालेबाफ चयो आहे त अमेरिका खे कश्मीर में ईरानी शहरनि ते हमले जी घिरी क़ीमत अदा करणी पवंदी। नौशेरो फेरोज में कोच ऐं ट्रक में टक्कर, हिकु ॼणो फौत। क़ौमी शाहरा ते नूर रिपोर्ट वटि हादसे सबब फारूक चन्ना फौत, चार ॼणा ज़ख़्मी। मुसाफ़िर कोच शिकारपुर खां कराची वञी रही हुई त हादसो पेश आयो आहे। मटियारी में ट्रालर ऐं मोटरसाइकिल में टक्कर सबब नौजवान फौत थी वियो। शहरियार शहर जे पुट जहांगीर शहर जे मुबैन अगवा केस में नामज़द मुख्य जवाबदार राउती जे कचे वारे इलाइक़े मां गिरफ़्तार। पुलिस जवाबदार जतोई शहर ऐं संदसि साथी दोदो शहर खे गिरफ़्तार कयो। कुझु ॾींहं अॻु जहांगीर शहर कचे वारे इलाइक़े मां मुबैन अगवा थियण बाद कुझु ई कलाकनि में बाज़ियाब बि थियो हो। हिकु माण्हू सिंध अमर जे नाओ मोम जारी। केटीएन न्यूज़ ऐं कावस जे सॾ ते सिंध खे मौसमियाती तब्दीलीअ खां बचाइण लाइ वण लॻाइण वारी मोहम जारी। मुख़्तलिफ़ शहरनि में सियासी समाजी धुरियुनि पारां वण लॻाइण जो सिलसिलो जारी आहे। सिंध खे सरसब्ज़ रखण वारे अज़म जो बि वरजाओ।
1: सोलर ऐं बैटरी ते डायरेक्ट हले ऐं बाक़ी तमामु पखनि जे मुक़ाबले में ॿिए ज़बरदस्त हवा। रॉयल इनवर्टर फैंस, साथ ज़िंदगी भर का।
2: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
3: अजरक के रंगों से रंगी,
4: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
3: सिंध के दिल से निकली आवाज,
4: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
5: केश ऐं किस्तन ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त केश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435, एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
6: खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राओ दिलमीर गार्डन जे साम्हूं, सलीम कॉलोनी, टंडो गुलाम अली रोड, मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा, CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण, औरतनि जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण, बांझपन।
7: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा, MBBS रेडियोलॉजी, अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी, हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। यादि रख, निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT, लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी, मोबाइल नंबर 2310 31 43 842।
8: खुशखबरी, खुशखबरी, साफ़ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
9: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो, मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड,
8: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल,
9: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
8: हुन खां अलावा असां वटि रिफिल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूदु। आहे।
9: अवां जे इत्माद के कायम कंदे, अवां जी जरूरत जो ख्याल रखदे।
8: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार, शादी ऐं बिन तकरीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासिल लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
9: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
10: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
5: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
10: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
5: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदी।
10: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
5: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
4: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।
9: छावा पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो
6: तपोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एड़ो FM रेडियो आए
9: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल।
6: हाँ गोठन शहरन परे परे ताई बुधो वींदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
9: बस पो हाने खणो फोन पेंजे इश्तिहार हलाइण लाए
6: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सा हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
9: 03125252786।
6: जी हाँ 2315525786।
9: GFM रेडियो नेटवर्क
6: सिंध जो आवाज़।

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: के हो तो आवाज भी सिंह की है। GFM 88 नेटवर्क सिंह की आवाज।
1: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
2: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
1: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
2: रोजानू सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी।
1: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हये में सूर, चेल में सूर, रत जो घट थियण, कमजोरी ऐं औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
2: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
3: कैश ऐं किस्तनि ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ ख़ुश ख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
4: खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण, औरतन जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण, बांझपन।
1: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। यादि रख निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT, लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी, मोबाइल नंबर 2310-3143-842।
5: खुशखबरी खुशखबरी साफ़ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
6: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो, मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड,
5: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल,
6: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
5: हुन खां अलावा असां वटि रिफल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
6: अव्हां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्यालु रखंदे,
5: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार, शादी ऐं ॿियनि तकरीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
6: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
0: अपना शहर, अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।
7: छा अव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक्की लाइ सोचे रहिया आहियो?
3: त पोइ GFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
7: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
3: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
7: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
3: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
7: 03125252786।
3: जी हा, 2311-2525-786।
7: GFM रेडियो नेटवर्क
3: सिंध जो आवाज़।

गामी असा सा गड आही माजिद सोलंगी फ्रॉम सखर चौथा था गुलाब ता जो आवाज डाढो मिठो आए मेहरबानी मिठा साईं ता भी डाढा मिठा हो अला खुश रखंदो माजिद साईं आबाद हुजो लख कुर्ब तवाजा सखर वारा असन प्यारा जे के दोस्त आइन जे आई अब्दुरहीम जलाई किथे गिराजुर आए त उहो बि ॾाढो मिठो माण्हू आहे अहिड़े तरीक़े सां वरी तव्हां आहियो या सखर खां ॿिया काफ़ी दोस्त आहिनि जेके असांखे लिखंदा आहिनि असांजे प्रोग्राम में शामिल थींदा आहिनि ऐं ॾाढी ख़ुशी थींदी आहे ऐं लाड़काणे जा दोस्त बि लिखंदा आहिनि मीरपुर ख़ासि वारा बि अॼु अलाए किथे ग़ाइबु आहिनि उन्हनि जा बि मैसेज न त अमूमन हिन टाइम ते अची वेंदा आहिनि ऐं लाड़काणे वारनि जा बि अची वेंदा आहिनि ऐं अहिड़े तरीक़े सां वरी असांखे ॿुधंदा रहंदा आहिनि असांजा प्यारा दोस्त मीर मेहरापुर स्टेशन तां उन्हनि जा बि मैसेज ईंदा आहिनि त शायदि अॼु कंहिं कम में मसरूफ़ आहिनि या वरी जेकर ॿुधी रहिया आहिनि त पोइ हू तयारीअ में हूंदा था त गुलाब खे ज़रूरु असां मैसेज कयूं था त बिल्कुलु अदा तव्हां होॾे मैसेज मोकिले सघो था महिरबानी आहे तव्हांजी ऐं अदा माजिद जो ई ॿियो मैसेज असांजे प्रोग्राम में आहे चए थो अस्सलाम अलैकुम गुलाब भाई वी आई पी शो आहे ऐं शाहिद अली बबर जे कलाम जी अदा जन फरमाइश कई आहे त शाहिद अली बबर जो कलाम अदा ज़रूरु तव्हांखे ॿुधाईंदुसि ऐं ॾाढो ज़बरदस्त तव्हांखे शाहिद अली बबर जो कलाम ॿुधाइबो

सऊदी अरब 13 मुल्कन सां गॾिजी बहरी रस्तनि जे तहफ़ लाइ बहरी इतिहाद क़ाइमु करे वरितो। पाकिस्तान पारां बि हिमायत बहरी दिफ़ाई इतिहाद जे क़याम लाइ इजलास में 43 मुल्कनि शिरकत कई। सऊदी अरब खे बहरी इतिहाद जो बानी सरबराह बणाइण ते ॻाल्हियूं थियूं। इतिहाद बाबल मंद ऐं विच ओभर में दिफ़ाई सहकार खे मज़बूत कंदो। सऊदी परदेही वज़ारत मूजिबि हर मुल्क इतिहाद में शमूलियत करे सघे थो।

ईरान जो कुवैत में अमेरिकी स्ट्रेटजिक हंधन ते ड्रोन ज़रिए निशानो बणाइण जी दावा। ईरानी फौज चयो त कश्मेट ते रहायशी इमारत ते अमेरिकी हमले जे रद अमल में अमेरिकी वेढ़ाक जहाज जे हिंगर्स मुवासलाती निज़ाम ऐं गोदामनि खे निशानो बणायो। ईरानी पार्लियामेंट जे स्पीकर बाकर कालेबाफ चयो आहे त अमेरिका खे कश्मीर ईरानी शहरनि ते हमले जी ॻरी क़ीमत अदा करणी पवंदी। कोयटा जे इलाके स्पेन कारेज में कोयले जे खाण में धमाके सबब 34 पोरे दबजी फोत। खाण में फाथल 8 जणनि खे बचाइण लाइ रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। पीडीएम में इख़्तियारनि जो चवणु आहे त खाण मां वधीक 6 मजदूरनि जा लाश ॿाहिरि कढिया विया आहिनि। फोतियुनि जो अंग वधी 34 थी वियो आहे। धमाके वक़्त 42 मजदूर खाण अंदरि मौजूद हुआ। सूबाई वज़ीर मदनियात शोएब नौशेरवानी चयो आहे त ॾुखियुनि हालतुनि बावजूद रात देर ताईं रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहियो। खाण अंदर फाथल ॿियनि पोरितनि खे बि ॿाहिरि कढियो वेंदो। साने में कंहिं जी ग़लती या कोताही साबित थी त सख़्त सज़ा ॾिनी वेंदी। बलोचिस्तान सरकार पारां हादसे में फोत थियल मज़दूरनि जे वारसनि खे मुआवज़ो ॾियण जो ऐलान। फोत थियल मज़दूरनि जे वारसनि खे 5-5 लख ऐं ज़ख़्मियुनि खे 3-3 लख रूपया मुआवज़ो अदा कयो वेंदो। जेकोबाद में बना पुलिस मुक़ाबले में मारिजी वियल नौजवान जो लाश रखी धरणो। वारसन अली हैदर बुलेदीअ जो लाश रखी धरणो हयो। वारसन जो चवणु आहे त पुलिस कूड़े मुक़ाबले में नौजवान खे क़तल ऐं बख़्शल बुलेदीअ खे ज़ख़्मी कयो आहे। मुलविस अहलकारनि ख़िलाफ़ केस दाख़िल करे इंसाफ़ फराहम कयो वञे। नौशेरो फिरोज में कोच ऐं ट्रक में टकर, हिकु ॼणो फोत। क़ौमी शाहराह ते नूरपुर वटि हादसे सबब फारूक चन्ना फोत। 4 ॼणा ज़ख़्मी। मुसाफ़िर कोच शिकारपुर खां कराची वञी रही हुई त हादसो पेश आयो। मटियारी में ट्रॉलर ऐं मोटरसाइकिल में टकर सबब नौजवान फोत। शहरियार शहर जे पुट जहांगीर शहर जे मोबाइल अगवा केस में नामज़द मुख्य जवाबदार राउती जे कचे वारे इलाइक़े मां गिरफ़्तार। पुलिस जवाबदार जतोई शहर ऐं संदसि साथी दोदो शहर खे गिरफ़्तार कयो। कुझ ॾींहं अॻु जहांगीर शहर कचे वारे इलाइक़े मां मोबाइल अगवा थियण बाद कुझ ई कलाकनि में बाज़ियाब बि थियो हो।

हिकवण सिंध अमरजे नाव मोम जारी केटीएन न्यूज ऐं कावश जे सॾु ते सिंध खे मौसमियाती तब्दीलीअ खां बचाइण लाइ वण लॻाइण वारी मोम जारी मुख़्तलिफ़ शहरनि में सियासी समाजी धुरियुनि पारां वण लॻाइण जो सिलसिलो जारी सिंध खे सरसब्ज़ रखण वारे अज़म जो बेवर्जाउ।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
2: खुशखबरी खुशखबरी साफ ऐं शिफाव पाणी सेहतमंद जिंदगी जी ज़मानत।
3: अवांजे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड
2: जेको पेश करे तो 330 मिलीलीटर 500 मिलीलीटर 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल
3: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
2: हुन खां अलावा असां वटि रिफल जी सहूलियत पिणु सस्ते अॻिते मौजूदु आहे।
3: अवां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अवां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे
2: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार शादी ऐं ॿियनि तक़रीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिणु मौजूदु आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
3: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर वेझो सोनेरी बैंक बदीन रोड मातली।
4: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
5: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
4: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जी बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद
5: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां राति जो 10 बजे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदी।
4: औलाद जो न थियण औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि हई में सूर चेल में सूर रत जो घटि थियण कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
5: एड्रेस अमा आशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
6: कैश ऐं किस्तनि ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितियूं लॻाइण लाइ ख़ुशख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितियूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितियूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
7: ख़ुशख़बरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण औरतुनि जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण बांझपन।
4: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। यादि रख निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी मोबाइल नंबर 2301-43-843-842।
1: अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GAFM 90.4।
4: जुमतुल मुबारक जे बाबरकत ॾींहं जी ख़ुसूसी नशरियात GAFM रेडियो नेटवर्क जे GA मातली बदीन FM 90.4 जे स्टूडियोज़ मां पेश कई पई वञे।

हुजे, एम टू हुजे, एम थ्री हुजे, एम फोर हुजे, एम फाइव मोटरवे हुजे, इन्हनि मां कंहिं बि मोटरवे ते मुंहिंजी स्पीड 120 खां बिल्कुल बि मथे न आहे हूंदी। 100 ते स्पीड जेका आहे रखी करे असां वेंदा आहियूं। हालांकि जन गाॾियुनि में असां सवारी कंदा आहियूं, गाॾियूं ॾाढी तेज़ रफ़्तार हूंदियूं आहिनि, हुन खे माण्हू काफ़ी भॼाए बि सघे थो, पर हुन जे बावजूद बि असां नायूं हलाईंदा, छो जो तेज़ रफ़्तारी हमेशा नुक़सान ॾिनो आहे। जंहिंजे करे रफ़्तार पंहिंजी खे बिल्कुलु धीमी रखंदा कयो। ऐं मुंहिंजो कॉन्सेप्ट इहो ई हूंदो आहे त जेकर 5 मिंट लेट पहुतासीं न त को मसलो न आहे, का ॻाल्हि कोन्हे का। अधु कलाकु लेट पहुतासीं, कलाक लेट पहुतासीं त का ॻाल्हि कोन्हे का। हमेशह ईअं थींदो आहे जेकर मुंहिंजो टार्गेट फिट थियल आहे त मूंखे 12 वॻे सखर पहुचणो आहे, ऐं मूंखे ख़बर आहे त मूंखे 2 कलाक आहे, त मां 10 वॻे जो निकिरां, उन खां बहितर न आहे त मां 9 वॻे निकिरी पवां, त मूंखे कलाक जेको एक्स्ट्रा हूंदो न उन में गाॾी जी स्पीड बि कान वधाइणी पवंदी। अगरि किथे ट्रैफ़िक इशू आहे त उहो ट्रैफ़िक इशू बि कवर थी वेंदो, ऐं ॾिनल टाइम ते मां सुकून सां पहुची वेंदुसि, फ्रेश थी वेंदुसि, ऐं उहो जंहिं बि कम सां मां वियो आहियां त उहो कमु थी वेंदो आहे। हिन जे करे टाइम शेड्यूल बि पंहिंजो अहिड़े तरीक़े सां ई तव्हां ठाहींदा कयो त जीअं तव्हांखे तेज़ रफ़्तारी खां जेको आहे बचाव मिली वञे। त प्रोग्रामिंग तो सॼा मैसेजेस बि आहिनि, उहे बि शामिल कंदा हलंदासीं। गुट गुलाम अहमद साबकीअ खां असांजो प्यारो भाउ आहे अली रज़ा साबकी, पंहिंजो प्रोग्राम ॿुधे पियो, चवे थो साईं अस्सलाम अलैकुम। त वालेकुम अस्सलाम अली रज़ा भाउ, मुंहिंजे तरफ़ खां तव्हांखे, तव्हांजे समूरे गोठ गुलाम अहमद साबकी जे प्रिय प्यारनि खे बि अस्सलाम अलैकुम ऐं वेलकम। तव्हां मुंहिंजे प्रोग्राम में पहिरियों दफ़ो शामिल थिया आहियो अदा, तव्हांखे स्पेशली मां भलीकार चवां थो। ऐं अदा जन शेर लिखियो आहे त चवंदा आहिनि त माण्हू सभु न सुहिणा, वाह माण्हू सभु न सुहिणा, पखी सभु न हंज, कंहिं कंहिं माण्हू मंझि अचे बूए बहार जी। जी हा, बिल्कुलु असांजे समाज में कंहिं कंहिं अहिड़ा बहितरीन शख़्सियतूं हूंदियूं आहिनि, अहिड़ा बहितरीन माण्हू हूंदा आहिनि जिन मां हर वक़्तु बहार जी ख़ुशबू मिलंदी रहंदी आहे। बहार जी ख़ुशबू जेका आहे न उहो ख़ुशियूं आणींदी आहे। इन जे करे असांखे सभिनी खे इहो ई घुर्जे त असां पंहिंजे पाण खे बहार जी ख़ुशबूअ वांगुरु कयूं। जेको बि माण्हू असां सां मिले उहो इहो शेर ज़रूर चए त माण्हू सभु न सुहिणा, पखी सभु न हंज, कंहिं कंहिं माण्हूअ मंझि अचे बू बहार जी। त महिरबानी अदा अली रज़ा, मुंहिंजे तरफ़ खां तव्हांखे इहो जेको शेर आहे इहो डेडिकेट कयां थो तव्हांजे समूरे ॻोठ वारनि खे। महिरबानी मिठा। ऐं कामरान लगारी असांखे मोरो खां ॿुधी रहियो आहे अदा। कामरान, पहिरियों दफ़ो तव्हां असांजे शो में शामिल थिया आहियो, तव्हांखे बि मां पंहिंजे प्रोग्राम में स्पेशली भलीकार चवां थो। अदा जन जलाल चांडियू जे कलाम जी फरमाइश कई आहे ऐं हाज़िर मुंहिंजा मिठा। जलाल चांडियो असांजे ज़िले नौशहर फिरोज़ जे नंढड़ो हिकिड़ो शहर जेका यूनियन काउंसिल आहे फुल सां हुनजो तालुक़ु हुयो, अॼु बि हुनजो औलाद ॻाइण सां तालुक़ु रखे पियो ऐं उन जा पुट ॾाढो सुठे तरीक़े सां ॻाए रहिया आहिनि। पर जलाल चांडियू जे लेवल ते ॻाईंदो हुयो ऐं जलाल चांडियू जी जेका मक़बूलियत हुई उहा मक़बूलियत उन जा पुट माणे नाहिनि सघिया, पर ईअं बि नाहे त का हुननि मक़बूलियत बिल्कुलु न आहे माणी न, हू मक़बूलियत हू बि माणे चुका आहिनि ऐं ॾाढा सुठो ॻाईंदा आहिनि ऐं सॼी सिंध छा पूरे पाकिस्तान में हुननि खे प्रोग्राम में इनवाइट बि कयो वेंदो आहे ऐं हू ॾाढा राज़ ख़ुशि वेंदा आहिनि। वॾी ॻाल्हि हुननि जी इहा आहे त हू पंहिंजे वालिद वांगुरु तमामु घणा मोहबत भरिया माण्हू आहिनि। त महिरबानी आहे अदा तव्हांजी, तव्हां असांजे प्रोग्राम में शामिल थिया। कामरान साईं भलीकार तव्हांखे चऊं था। रसूलाबाद खां आबिद हुसैन शंबाणी पंहिंजो प्रोग्राम ॿुधे पियो अदा, महिरबानी भाउ। ऐं अदा जन चवंदा अस्सलाम वालेकुम अदा, त वालेकुम अस्सलाम चवंदा। मेहरापुर खां मेहरापुर वारनि खे यादि आयो, जी हा बिल्कुलु अदा साईं, मेहरापुर वारा बि मूंखे यादि आहिनि। ॾिसो तॾहिं त मां मेहरापुर वारनि जो नालो खयो न मुंहिंजा मिठा साईं, मूंखे जेकर मेहरापुर वारा यादि न हुजनि हा। शाहिद बबर जे कलाम जी अदा जन फरमाइश कई आहे, हाज़िर मुंहिंजा मिठा साईं। शाहिद बबर तव्हांखे ज़रूरु ॿुधाईंदासीं, तव्हां दिलजाए कयो। ऐं अदा आबिद हुसैन, स्पेशली मां तव्हांखे पंहिंजे प्रोग्राम में भलीकार चवां थो। राशिद अली ख़ासि खिली पंहिंजे प्रोग्राम ॿुधनि पिया, चवंदा अस्सलाम वालेकुम या अली मदद। वालेकुम अस्सलाम मौला अली मदद, महिरबानी मिठा तव्हां असांजे प्रोग्राम में शामिल थिया।

हमीरपुर खां असांखे लिखंदा आहिनि अठहतरि मोरी खरा जे हमीर चंद्र किशोर कुमार पवन कुमार ऐं टेलर मास्टर आहे हीरा लाल ऐं उन्हनि सां गॾु आहे अरबाब अली। त अदा साईं तव्हां मूंखे बिल्कुलु यादि आयो, मां तव्हांजो नालो न खयो बल्कि मां इएं चयो त मूंखे मीरपुर वारा दोस्त अलाए किॾे हलिया विया आहिनि ऐं महिरबानी आहे। अदा जन चवनि था हाउ आर यू, अदा मां बिल्कुलु ठीकु ठाक आहियां, तव्हां जूं दुआऊं आहिनि। ऐं चवंदा सलाम त वालेकुम असलाम मुंहिंजा भाउ, महिरबानी, ख़ुशि हुजो, आबाद हुजो, तव्हां अहिड़े तरीक़े सां असांजे शो में शामिल थींदा रहो। त हिकिड़ो ॾाढो दिलशीरती विणे जी आवाज़ में मूं वटि कलाम आहे, अचो त उन खे इंजॉय कयो।

दिलशेर ते उन्हें जो खूबसूरत आवाज़ है तवाजो सुंदर समातू तो मुझे मीठा साई तुम भी दोस्तों कुछ मैसेजेस हैं वे पंजे प्रोग्राम में शामिल कंदा हलूं तो शहबाज अली पंजे प्रोग्राम बुधी रहा है गोठ माड़ी खां अदा शहबाज ताकि मां पंजे प्रोग्राम में भलीकार चवां तो पर तो ता मुझे प्रोग्राम में शामिल थे आयो लख कुर्ब लख एहसान अवाजा गोठ हाजी मोहम्मद शरीफ डेपर खां हालानी वेझो हाजी मोहम्मद शरीफ डेपर जो गोठ है जिथा का असा बुधी रो है वाजिद अली डेपर अरमान अली डेपर जिशान अली डेपर चवंदा अहमद मुगल जो असा कलाम बुधरा हाजिर पुजा मिठा सही तुम बो मैसेज आया तक अहमद मुगल जो जरूर कलाम बुधाइंदुस तवा दिल जाए कयो असा प्रोग्राम ही असा गड है कहड़ो भा चवे तो अस्सलाम वालेकुम भाई जान आपका शो नाइस है पनो अकल खां सैयद इमदाद अली शाह बुखारी साहब साई साई मुझो बिस्मिलायूं खुश हो ठीक हो तो वे सही है तवाजी वालेकुम असलाम मां बिल्कुल ठीक ठाक आया मेहरबानी तवा असा शो के पसंद करे रहा हो अदाजन जा दोस्त आइन गुलशेर मंगरियो मोहम्मद ताहिर लुंड जवार मोहम्मद बचल शबाणी मोहम्मद डिनू सूमरो अदाब तवाजा बचल शंबाणी साहब तो मैसेज सवेल कयो हो जरूर वो शो बुझी रो है बाकी मोहम्मद ताहिर लुंड बुधे पे न पे बुधे का खबर ना अगर बुध हों तो तवाजा सलाम उन तोड़ी पहुंची वे आइन तो मेहरबानी है मुझा मिठा साई तवाजा कुर्ब जो तवा असाजे प्रोग्राम में शामिल थे आयो मोहम्मद यासीन गुजारो पंजे प्रोग्राम बुझी रो है मुख्य पक है सकरण का बुध है असा गाय चवंदा अस्सलाम वालेकुम अदा वालेकुम अस्सलाम अदा की आयो अदा मां बिल्कुल ठीक ठाक आया डाढ़ो भी

पी लगो पे आया तवा की आयो ठीक है वो तबियत सही है तवा जी अदा यासीन तवा फरमाइश की है तो मुख्य फोटे जरदारी जी कलाम बुधरायो तो हाजिर मुझे मिठा सही छो न तांगे फोटे जरदारी जो कलाम बुधरांदासी बिल्कुल तांगे फोटो जरदारी जो भी कलाम बुधरांदासी तो अड़े तरीके से मुझे सही तवा भी असि प्रोग्राम में शामिल थी सको शामिल थे तरीकेकार ढो सवलो है आसान है पांजे मोबाइल फोन के राइट मैसेज ऑप्शन में हलिया वो एमआरओ लिखो स्पेस दियो स्पेस का लिखो पांजो नालो पांजे गोठ या शहर जो नालो लिखी करे मोकलियो असना 888-1 ते करौफ मक्सी जो खूबसूरत आवाज आए अच्छो तो उनके एंजॉय कयो।

0: जुमतुल मुबारक जे बाबरकत दिए जी खुसूसी नशरियात जीए एफएम रेडियो नेटवर्क जे जीए मातली बदीन एफएम 90.4 जे स्टूडियोज मां पेश कई पई वने।
1: खुदा की अजमतें क्या है मुहम्मद।

0: अमड़ सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
1: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
0: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
1: रोजानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी
0: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हये में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी ऐं औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे
1: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230
2: खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो जातल सुञातल निजामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी औलाद जो न थियण औरतन जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण बांझपन
0: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीजन जो इलाज कंदी यादि रखंदा निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी मोबाइल नंबर 2310-3143-842 जुमतुल मुबारक जे बाबरकत ॾींहं जी ख़ुसूसी नशरियात GA FM रेडियो नेटवर्क जे GA मातली बदीन FM 90.4 जे स्टूडियोज़ मां पेश कई पई वञे।

तव्हांखे तव्हांजे पसंदि जो कलाम ॿुधरायो वेंदो। ॻोठ मोहम्मद इब्राहिम संदीलो खां मोहम्मद हारून संदीलो पंहिंजो प्रोग्राम ॿुधी रहियो आहे। अदा हारून, तव्हांजे पसंदि जो कलाम यानी रऊफ़ मक्सी जे आवाज़ में कलाम ऑलरेडी मां प्ले करे चुको आहियां। इनशाला ताला हयाती रही ऐं ईंदड़ जुमे जे ॾींहुं वरी घर पाण गॾु हूंदासीं त तव्हांखे तव्हांजे पसंदि जो कलाम ज़रूर ॿुधाइबो। दिलि जाइ कयो, दिलि वॾी कयो। त असांजे प्रोग्राम सां गॾु आहे रोज़ीना लगारी फ्राम फुल सिटी ऐं चवनि थी सभिनी ॿुधण वारनि खे खोड़ सारियूं दुआऊं ऐं सलाम। त वालेकुम सलाम रोज़ीना, कीअं आहियो तव्हां? ठीकु आहियो, हुते बि सही आहे तव्हांजी। अलाह साईं तव्हांखे ख़ुशि ऐं आबाद रखंदो। तव्हां पहिरियों दफ़ो मुंहिंजे शो में शामिल थिया आहियो, मुंहिंजे तरफ़ खां स्पेशली तव्हांखे असां भलीकार चऊं था ऐं आबाद हुजो। खोड़ सारियूं दुआऊं तव्हांजे लाइ असांजूं आहिनि। ऐं ॿियो तव्हां जेको लिखियो आहे, सच पुछो त मूंखे सम्झ में अञा कोन आयो आहे। मां ॾाढो पढ़ण जी कोशिशि कई आहे ऐं टाइम बि थोरो वञी बचो आहे। महिरबानी तव्हांजी, इनशाला नेक्स्ट जुमे वारे ॾींहुं वरी तव्हां मुंहिंजे शो में ज़रूर शामिल थीजो ऐं तव्हां शामिल थी करे बहितर तरीक़े सां लिखी करे इहे शयूं जेके आहिनि उहे असां मोकिले वठिजो। तमामु घणी महिरबानी तव्हांजी। अलाह साईं तव्हांखे ख़ुशि रखे। दीदार मरी ॻोठ माड़ीअ खां पंहिंजो प्रोग्राम ॿुधे पियो। महिरबानी अदा दीदार, ख़ुशि हुजो, सलामत हुजो।

मुंहिंजा मिठा साईं प्रोग्राम जो वक़्तु पहुची वियो आहे। पंहिंजी पुॼाणी ते वञण खां पहिरियां तव्हांखे चवंदासीं पंहिंजो घणे खां घणो ख़्यालु रखिजो। अॼु जुमे जो भलारो ॾियारो आहे, निमाज़ ज़रूरु पढ़िजो ऐं निमाज़ दौरान असांखे पंहिंजे दुआनि में ज़रूरु यादि रखिजो। दुनिया क्लाइमेट्स चेंज यानी मौसमियाती तब्दीलियुनि खे मुंहुं ॾेई रही आहे। हर प्रोग्राम में मां तव्हांखे चवंदो आहियां तव्हां बराए करम पंहिंजे तरफ़ खां वण ज़रूरु पोखियो। ॾिसो, हिकिड़ो वण कटण में त अधु कलाक या कलाकु लॻंदो आहे, पर उहो वण वरी ॿीहर तयारु थियण में 10 साल लॻी वेंदा आहिनि। हुनजे करे जेकर तव्हां अॼु खां ई इहा तयारी कंदा आहीं, इन भरपूर मुहिम में हिसो वठंदा त इन 10 सालनि खां पोइ असांजी सिंध बटारी सरसब्ज़ थी वेंदी, शादाब थी वेंदी ऐं इहा जेके गर्मीअ जा अहिड़ा सूरत हालूं आहिनि उहे मुकमल तौर ते ख़तम थी वेंदियूं। त छा कंदव तव्हां, पंहिंजो वण हिकिड़ो ज़रूरु पोखींदव ऐं उहो वण पोखे करे पोइ वरी तव्हां मूंखे ज़रूरु ॿुधाईंदव ऐं उमेदु कयां थो त मुंहिंजो इहो चवणु तव्हां ज़रूरु वठंदा। पंहिंजे नियाणियुनि खे पुटनि खे तालीम ज़रूरु ॾिजो ऐं निमाज़ जी पाबंदीअ सां गॾु नबी करीम सलाहु आल वसलम जे मथां दुरूद कसरत सां पढ़िजो ऐं उन दौरान मूंखे पंहिंजे दुआनि में ज़रूरु यादि कजो। वीदे वीदे हदीका कयानी जो हिकिड़ो ॾाढो ज़बरदस्त सॉन्ग आहे, शाहब लतीफ़ भिटाई जो शायदि 250 शायदि इहा वर्सी हली रही आहे। त उन मुनासिबत सां हीउ हदीका कयानी जो बि सॉन्ग प्ले कयो वञा थो। इंशाल्लाह ताला हयाती रही त वरी ईंदड़ जुमे ते 11 वॻे खां वठी 1 वॻे ताईं पाण गॾु हूंदासीं। तेसि ताईं जे लाइ पंहिंजे मेज़बान गुलाब खान भेण खे ॾींदा इजाज़त। अलह वाही अलह निगहबान।

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: बाहर कढ़ा गया है तहबाद बोतन जो अंगवदी चोटी है। धमाके वक्त 42 मजदूर खान अंदर मौजूद हुआ। सूबाई वजीर मैदनियात शोएब नौशरवानी चयो आहे त डुखियन हालतन बावजूद रात देर तई रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहो। खान अंदर फाथल बेन पोरेतन के भी बाहर कढ़ो वेंदो। साने में कंहिंजी गलती या कोताही साबित थी त सख्त सजा डिनी वेंदी। बलूचिस्तान सरकार पारा हादसे में फौत थियल मजदूरन जे वारसन के मुआवजो डेण जो ऐलान। सऊदी अरब 13 मुल्कन सां गॾिजी बहरी रस्तन जे तहफ़ुज़ लाइ बहरी इतिहाद क़ाइम करे वरितो। पाकिस्तान पारां बि हिमायत। बहरी दिफ़ाई इतिहाद जे क़याम लाइ इजलास में 43 मुल्कन शिरकत कई। सऊदी अरब खे बहरी इतिहाद जो बानी सरबराह बणाइण ते ॻाल्हियूं थियूं। इतिहाद बाबुल मंदब ऐं विच ओभर में दिफ़ाई सहकार खे मज़बूत कंदो।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन GFM, बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।
2: Yeah!

0: खुशखबरी खुशखबरी साफ़ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत
1: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड
0: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर 500 मिलीलीटर 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल
1: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
0: हुन खां अलावा असां वटि रिफल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
1: अव्हां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्यालु रखंदे
0: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार शादी ऐं ॿियनि तकरीबन लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
1: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर वेझो सोनेरी बैंक बदीन रोड मातली।
2: अमड़ सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
3: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
2: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जी बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
3: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताईं मरीजन जो इलाज कंदी।
2: औलाद जो न थियण औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि हई में सूर चेल में सूर रत जो घटि थियण कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
3: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
4: कैश ऐं किस्तनि ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
5: खुशखबरी अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में अव्हां जो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण औरतुनि जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण बांझपन।
2: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। यादि रख निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी मोबाइल नंबर 2310-31-43-842। जुमतुल मुबारक जे बाबरकत ॾींहं जी ख़ुसूसी नशरियात GA FM रेडियो नेटवर्क जे GA मातली बदीन FM 90.4 जे स्टूडियोज मां पेश कई पई वञे।
6: छा तव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो
4: त पोइ GA FM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
6: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
4: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GA FM मातली बदीन।
6: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
4: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
6: 03125252786।
4: जी हा, 2331-2525-786।
6: GA FM रेडियो नेटवर्क
4: सिंध जो आवाज़।

0: सिंध के माथे का झूमर
1: GFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।
3: जुमतुल मुबारक जे बाबरकत दिए जी खुसूसी नशरियात GFM रेडियो नेटवर्क जे GA मातली बदीन FM 90.4 जे स्टूडियोज मां पेश कई पई वने।

जुमतुल मुबारक जे बाबरकत दिए जी खुसूसी नशरियात जीए एफएम रेडियो नेटवर्क जे जीए मातली बदीन एफएम 90.4 जे स्टूडियोज मां पेश कई पई वने।

0: का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
2: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
3: दुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
2: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकानी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
3: रोजानू सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी।
2: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हय में सूर, चेल में सूर, रत जो घट थियण, कमजोरी ऐं औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
3: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3141-230।
4: कैश ऐं किस्तन ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ ख़ुश ख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻाइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख्श खोसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
5: खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो जातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण, औरतन जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण बांझपन।
2: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़न जो इलाज कंदी। याद निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी खिदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT, लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी, मोबाइल नंबर 2301-43-843-842।
6: खुशखबरी खुशखबरी साफ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
7: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड
6: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल,
7: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
6: हुन खां अलावा असां वटि रिफल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
7: अव्हां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्यालु रखंदे
6: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार, शादी ऐं ॿियनि तकरीबन लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
7: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
2: जुमतुल मुबारक जे बाबरकत ॾींहं जी ख़ुसूसी नशरियात GAFM रेडियो नेटवर्क जे GA मातली बदीन FM 90.4 जे स्टूडियोज मां पेश कई पई वञे।
8: छा तव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो?
4: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
8: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
4: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
8: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
4: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
8: 03125252786।
4: जी हा, 2301-43-5570-786।
8: GAFM रेडियो नेटवर्क,
4: सिंध जो आवाज़।

0: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: जुमतुल मुबारक जे बाबरकत दिए जी खुसूसी नशरियात GAFM रेडियो नेटवर्क जे GA मातली बदीन FM 90.4 जे स्टूडियोज मां पेश कई पई वने।

0: के हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क सिंक की आवाज।
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
2: जुमतुल मुबारक जे बाबरकत दिए जी खुसूसी नशरियात GFM रेडियो नेटवर्क जे GA मातली बदीन FM 90.4 जे स्टूडियोज मां पेश कई पई वने।
3: तव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक्की लाइ सोचे रहिया आहियो
4: त पोए GFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
3: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
4: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
3: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
4: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
3: 0331252576।
4: जी हा, 2315525786।
3: GFM रेडियो नेटवर्क
4: सिंध जो आवाज़।

0: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी भी दुख जो इजहार कंदे चयो आहे त वाकिए जी शफाफ जांच कई वञे ऐं जेको बि ज़िमेवार हुजे उन खिलाफ़ सख़्त कार्रवाई कई वञे। दुश्मन कुवतूं बलोचिस्तान खे गैर मुस्तहकम करण जूं कोशिशूं करे रहियूं आहिनि। सूबे में सूरत हाल कुझु ख़राब थी रही आहे। मुल्क में अजीब साज़िश थी रही आहे। सियासी समायतनि खे चवां थो त सियासत खे दहशतगर्दी सां न ॻंढियो। रियासत खे सियासत न पर रियासत खे रियासत जी ज़रूरत आहे। बलोचिस्तान जे वॾे वज़ीर सरफराज भुट्टी में पासिंग आउट परेड खे ख़िताब कंदे चयो आहे त सरफराज भुट्टी चयो त बलोच क़ौम खे अहिड़ी जंग तरफ़ धिकियो वियो आहे जंहिं में हासिल कुझ न थींदो। बलोचिस्तान जा माण्हू रियासत सां गॾु बीठल आहिनि। राह हक़ ते हलण वारनि लाइ असांजा दरवाज़ा खुलियल आहिनि। दहशतगर्दी ख़िलाफ़ हिकु इंच बि पोइ ते न हटंदासीं।

चिकमाबाद में मुबैना पुलिस मुकाबले में मारियल नौजवान जो वारसन जो लाश रखी धरणो। वारसन जो चवण आहे त पुलिस कूड़े मुकाबले में नौजवान अली हैदर बुलेदीअ खे कतल ऐं बख्शल बुलेदीअ खे ज़ख़्मी कयो आहे। मुलविस अहलकारनि ख़िलाफ़ केस दाख़िल करे इंसाफ़ फराहम कयो वञे। जलालपुर केरल ख़िलाफ़ कंदकोट में जस्कम जे एहतजाजी रैली। अॻवाणनि चयो आहे त वफ़ाक़ी हुकूमत सिंधू दरिया ते नवां केनाल न ठाहिण वारे फ़ैसिले ते अमल न कयो। जलालपुर केनाल में पाणी छोड़ करे सिंध जे हक़ ते धाड़ो हयो वियो आहे। तकरारी केनालनि जे ख़ात्मे ऐं सिंधूअ ते धाड़े ख़िलाफ़ जिदोजहद जारी रहंदी। शहरयार शहर जे पुट जहांगीर शहर जे मुबैना अगवा केस में नामज़द मुख्य जवाबदार राउती जे कचे वारे इलाइक़े मां गिरफ़्तार। पुलिस जवाबदार जतोई शहर ऐं संदसि साथी दोदो शहर खे गिरफ़्तार कयो। कुझु ॾींहं अॻु जहांगीर शहर कचे वारे इलाइक़े मां मुबैना अगवा थियण बाद कुझु ई कलाकनि में बाज़ियाब बि थियो हो।

0: कुमार सिंध अमर जे नाओ मुहिम जारी केटीएन न्यूज ऐं कावस जे सॾु ते सिंध खे मौसमियाती तब्दीली खां बचाइण लाइ वण लॻण वारी मुहिम जारी मुख़्तलिफ़
1: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
2: अजरक के रंगों से रंगी,
3: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज।
3: जीएफएम 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
4: खुशखबरी, साफ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सिहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
5: अव्हांजे पंहिंजे शहर माथली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो, मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड,
4: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 लीटर पाणी जी बोतल,
5: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
4: हुन खां अलावा असां वटि रिफिल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूदु आहे।
5: अव्हां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे, अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे,
4: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार, शादी ऐं ॿियनि तकरीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूदु आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
5: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
6: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
7: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
6: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद,
7: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां 10 बजे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदी।
6: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि, हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
7: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
8: कैश ऐं किस्तनि ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितियूं लॻाइण लाइ ख़ुशख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितियूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितियूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा ख़ुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड, मातली।
9: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में अव्हां जो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं, सलीम कॉलोनी, टंडो गुलाम अली रोड, मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा, CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण, औरतनि जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण, बांझपन।
6: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। यादि रख निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT, लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूदु आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी, मोबाइल नंबर 2301-3843-842। जुमतुल मुबारक जे बाबरकत ॾींहं जी ख़ुसूसी नशरियात GA FM रेडियो नेटवर्क जे GA मातली बदीन FM 90.4 जे स्टूडियोज़ मां पेश कई पई वञे।

इलाके वालों को पता चल जाए, उनको भी पता चल जाए इस पिंडाल में मौला अली के आशिक बैठे हैं। बावाज़े बुलंद, मैंने वापस सिंध जाना है, आपकी आवाज सिंध तक मेरे कानों में गूंजती रहे। बावाज़े बुलंद।

अभी उतनी आवाज नहीं आई। महफिल वाला पता नहीं कहाँ बैठा है, मैं तो जानता किधर है, सारे ही महफिल वाले। हाँ, ये जितने स्टेज पे बैठे हैं इनको इतनी आवाज सुनाए, इतनी आवाज आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी जितनी ये आशिक अब निकालेंगे। समाज फरमाए बावाजे बुलंद, जितनी अल्लाह ने जान में ताकत दी है उतनी जान के साथ मौलाली के नारे का जवाब देना है। बावाजे बुलंद, हैदर वर्गा सकीन कोई देखी आए जग सारा सफर दबेड़ा।

0: बस खत्म। जो बाहर खड़े हैं वो भी बोल दे
1: हो नारे हैदरी।
2: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
3: जुमतुल मुबारक जे बाबरकत दिए जी खुसूसी नशरियात GFM रेडियो नेटवर्क जे GA मातली बदीन FM 90.4 जे स्टूडियोज मां पेश कई पई वने।

0: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: खूबसूरती है जो असल राज, सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इन में मौजूद विटामिन ई बीड्स जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवां जी स्किन के बनाए निखरी चमकदार सिर्फ बिन डीहन में। डार्क स्पॉट्स के करे खत्म दिए कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर डी जो शो। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: जुमतुल मुबारक जे बाबरकत डीं जी खुसूसी नशरिया GFM रेडियो नेटवर्क जे GA मातली बदीन FM 90.4 जे स्टूडियोज मां पेश कई पई वञे।

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: जुमतुल मुबारक जे बाबरकत दिए जी खुसूसी नशरियात GFM रेडियो नेटवर्क जे GA मातली बदीन FM 90.4 जे स्टूडियोज मां पेश कई पई वने।

0: आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। सिंध की आवाज।
1: जुमतुल मुबारक जे बाबरकत दिए जी खुसूसी नशरियात GFM रेडियो नेटवर्क जे GA मातली बदीन FM 90.4 जे स्टूडियोज मां पेश कई पई वने।
2: आशना अपनी हकीकत से हो ऐ दहकान जरा, दाना तू खेती भी तू बारां भी तू हासिल भी तू। आह किसकी जुस्तुजू आवारा रखती है तुझे, राह तू रह रो भी तू रहबर भी तू मंजिल भी तू।

0: आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़। सिंध की आवाज़।
1: जुमतुल मुबारक जे बाबरकत दिए जी खुसूसी नशरियात GFM रेडियो नेटवर्क जे GA मातली बदीन FM 90.4 जे स्टूडियोज मां पेश कई पई वने।

जुमतुल मुबारक जे बाबरकत डीए जी खुसूसी नशरियात जीए एफएम रेडियो नेटवर्क जे जीए मातली बदीन एफएम 90.4 जे स्टूडियोज मां पेश कई पई वञे।

पलटिया जे इलाइक़े स्पिन कॉलेज में कोयले जी खाण अंदरि धमाके सबबि दबिजी वियल 34 पोरेतनि जा लाश कढिया विया। खाण में फाथल 8 ॼणनि खे बचाइण लाइ रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। खाण जे मालिक मूजिबि धमाके वक़्तु 42 मज़दूर खाण अंदरि मौजूदु हुआ। बलूचिस्तान जे वॾे वज़ीर वाके जी रिपोर्ट तलब करे वरिती। सदर ऐं वज़ीर आज़म पारां डुख जो इज़हार। पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी बि डुख जो इज़हार कंदे चयो आहे त वाके जी शफ़ाफ़ जाच कई वञे ऐं जेको बि ज़िमेवार हुजे हुन खे सख़्त कार्रवाई कई वञे।

दुश्मन कुवतूं बलूचिस्तान खे गैर मुस्तकिम करण जूं कोशिशूं करे रहियूं आहिनि। सूबे में सूरतहाल कुझु ख़राब थी रही आहे। मुल्क में अजीब साज़िश थी रही आहे। सियासी जमायतनि खे चवां थो, सियासत खे दहशतगर्दी सां न ॻंढियो। रियासत खे सियासत न पर रियासत खे रियासत जी ज़रूरत आहे। बलूचिस्तान जे वॾे वज़ीर सरफराज भुट्टीअ जी ATM ट्रेनिंग स्कूल कोयटा में पासिंग आउट परेड खे ख़िताब। सरफराज भुट्टी चयो त बलोच कौम खे अहिड़ी जंग तरफ़ धिकियो वियो आहे जंहिं में हासिल कुझ न थींदो। बलूचिस्तान जा माण्हू रियासत सां गॾु बीठल आहिनि। राह अॻिते हलण वारनि लाइ असांजा दरवाज़ा खुलियल आहिनि। दहशतगर्दी ख़िलाफ़ 1 इंच बि पोइते न हटंदासीं।

0: शायरनि जे सरताज हज़रत शाह लतीफ़ भिटाई जे 283 उर्स मुबारक जो अॼु आख़िरी ॾींहुं आहे। सिंध जो वॾो वज़ीर भिट शाह पहुची लतीफ़ एवार्ड विरिहाइण वारी तक़रीब में शिरकत कंदो। मुल्क जे कुंड कुर्छ मां आयल ज़ायरीन भिट जी नगरीअ ते मौजूद भिटाई सरकार जी दरगाह जे आते में दुआ सां उर्स जूं गैर सरकारी तकरीबूं पुॼाणीअ ते पहुची वयूं। रिवायती ज़िक्र ऐं समाबाद हज़ारे मुरीदनि गादी नशीन जी सरवाणीअ में सिंध समेत समूरे मुल्क जी सलामती ऐं खुशहालीअ लाइ दुआऊं घुरियूं।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
3: छा पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो?
4: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
3: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
4: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
3: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
4: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
3: 0331252578
4: जी हा, 2315525786
3: GAFM रेडियो नेटवर्क
4: सिंध जो आवाज़।

0: कैश ऐं किस्तन ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितियूं लॻाइण लाइ खु़शि ख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितियूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितियूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
1: अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण, औरतन जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण, बांझपन।
2: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। यादि रख निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT, लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी, मोबाइल नंबर 3310 41 43 842।
3: खुशखबरी, साफ़ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
4: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड
3: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल,
4: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
3: उन खां अलावा असां वटि रिफिल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
4: अव्हां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे
3: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार, शादी ऐं ॿियनि तक़रीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
4: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
2: अमर सिंध जे सींध में हिकु चमकंदड़ सितारो,
5: डुखोयल इंसानियत जी ख़िदमत जो बहितरीन मिसाल।
2: अम्मा आयशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद।
5: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदी।
2: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई। अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट।
5: मालूमात लाइ 2347-3241-230।
6: मातली के हो तो आवाज़ भी मातली की है।
7: सुनते रहो GFM 90.4।

आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, माटली और माटली की आवाज GFM 90.4।

0: के हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क सिंक की आवाज।
1: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम।

0: मेरा
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा वाइटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फॉली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: खुशखबरी खुशखबरी, साफ ऐं शिफाफ पाणी सेहतमंद जिंदगी जी ज़मानत।
3: अवां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो, मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड,
2: जेको पेश करे तो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल,
3: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
2: हुन खां अलावा असां वटि रिफल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
3: अवां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे, अवां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे,
2: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार, शादी ऐं ॿियनि तकरीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03713800392।
3: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
4: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
5: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
4: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जी बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद,
5: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां राति जो 10 बजे ताईं मरीजन जो इलाज कंदी।
4: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि, हय में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
5: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
6: कैश ऐं किस्तनि ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितियूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितियूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितियूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड, मातली।
7: खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं, सलीम कॉलोनी, टंडो गुलाम अली रोड, मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा, CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण, औरतुनि जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण, बांझपन।
8: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा, MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी, हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। यादि रख निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT, लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी, मोबाइल नंबर 2310-31-43-842।
9: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
10: सुनते रहो GFM 90.4।

0: दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
0: अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
2: खुशखबरी खुशखबरी साफ ऐं शिफ़ा पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
3: अवां जे पंहिंजे शहर माथली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड
2: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर 500 मिलीलीटर 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल
3: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
2: हुन खां अलावा असां वटि रिफल जी सहूलियत पिणु सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
3: अवां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अवां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे
2: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार शादी ऐं ॿियनि तकरीबन लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
3: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर वेझो सोनेरी बैंक बदीन रोड मातली।
4: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
5: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
4: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुन जे बीमारियुन जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद
5: रोजानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताईं मरीजन जो इलाज कंदी।
4: औलाद जो न थियण औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि हीअ में सूर चेल में सूर रत जो घटि थियण कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
5: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
3: खुशखबरी खुशखबरी हाणे अवां जे पंहिंजे शहर बदीन में माहिर ऐं मशहूर डॉक्टर कंसल्टेंट न्यूरोफिज़िशियन डॉक्टर शहबाज़ खान MBBS FCPS न्यूरोलॉजी फॉलोशिप स्ट्रोक फालेज लकवा मिर्गी जा दौरा पवण मथे जो सूर माइग्रेन चक्कर अचण या फेरी थियण पुठे ऐं कंध जे सूर जो ऐं नसुनि जो इलाज कंदो आहे। डॉक्टर शहबाज़ खान साहब हर जुमे जे ॾींहुं मंझंदि 2:30 वॻे खां 4:30 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदो आहे। एड्रेस डॉक्टर अली नवाज़ टालपुर जी अस्पताल कोर्ट रोड बाईपास बदीन। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03111-7099-890।
6: कैश ऐं किस्तनि ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितियूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितियूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितियूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।

0: अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो जातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी औलाद जो न थियण औरतन जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण बांझपन
1: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी याद रखंदा निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी मोबाइल नंबर 210-31-43-842
2: छा पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो
3: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
2: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल
3: ऐं हा ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन
2: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
3: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
2: 0331-252-5786
3: जी हा 2315-2576
2: GAFM रेडियो नेटवर्क
3: सिंध जो आवाज़

0: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवां दवां, यह है मोहब्बत व यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
1: सुनते रहो GFM 90.4।

पहर, जिंदगी की लहर, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GFM 90.4।

0: ट्रेंड का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा
0: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
2: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार। सिर्फ दो दिन में डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
3: खुशखबरी साफ ऐं शिफाफ पाणी सेहतमंद जिंदगी जी ज़मानत।
4: अवां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओजिनेटेड यूरिफिटेड
3: जेको पेश करे तो 330 मिलीलीटर 500 मिलीलीटर 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल
4: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
3: उन खां अलावा असां वटि रिफल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
4: अवां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अवां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे
3: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार शादी ऐं ॿियनि तक़रीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03713800392।
4: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर वेझो सोनेरी बैंक बदीन रोड मातली।
5: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
6: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
5: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद
6: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां राति जो 10 बजे ताईं मरीजनि जो इलाज कंदी।
5: औलाद जो न थियण औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि हई में सूर चेल में सूर रत जो घटि थियण कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
6: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
7: कैश ऐं किस्तनि ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ ख़ुशख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा ख़ुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
8: ख़ुशख़बरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण औरतुनि जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण बांझपन।
5: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। यादि रख निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूदु आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी मोबाइल नंबर 2310-3143-842।
1: मातली के हो तो आवाज़ भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
2: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवां दवां, यह है मोहब्बतो यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
0: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
1: सुनते रहो GFM 90.4।

अवांजे पंहिंजे शहर मातली में अवांजो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी औलाद जो न थियण औरतन जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार

0: न थियण बांझपन।
1: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरानी हाणे रोज़ानो मरीजन जो इलाज कंदी। याद रखंदा निज़ामानी मेडिकल सेंटर अवाम जी खिदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामानी मेडिकल सेंटर ते OT लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामानी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी मोबाइल नंबर 210-31-43-842।
2: खुशखबरी साफ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
3: अव्हांजे पंहिंजे शहर माकली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड
2: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर 500 मिलीलीटर 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल
3: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
2: उन खां अलावा असां वटि रिफिल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
3: अव्हां जे इत्माद खे क़ाइम कंदे अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्यालु रखंदे
2: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार शादी ऐं ॿियनि तक़रीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
3: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर वेझो सोनेरी बैंक बदीन रोड मातली।
1: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
4: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
1: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकानी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद
4: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां राति जो 10 बजे ताईं मरीजन जो इलाज कंदी।
1: औलाद जो न थियण औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि हये में सूर चेल में सूर रत जो घटि थियण कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
4: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 247-3241-230।
5: कैश ऐं किस्तनि ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितियूं लॻाइण लाइ ख़ुशख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितियूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितियूं लॻायो। सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻाइण लाइ राब्तो कंदा ख़ुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
6: छा अव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो
5: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
6: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
5: ऐं हा ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
6: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
5: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
6: 03125252786।
5: जी हा 2315525786।
6: GAFM रेडियो नेटवर्क
5: सिंध जो आवाज़।

0: It's 5:15 PM.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream, Asli Glow Har Niya Josho, a product by Biocon International Pakistan.
3: अजरक के रंगों से रंगी,
4: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
5: सिंध के दिल से निकली आवाज,
4: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GFM 90.4।

0: जी जनाब, वेलकम बैक वंस अगेन। अजहर, आसिम अजहर का बहुत प्यारा सा गाना आपने सुना और वापस आ चुके हैं आप मेरे साथ एक बार फिर से। तो जनाब, अब आपको बिल्कुल देर नहीं करवाते, आपकी कॉल लेते हैं क्योंकि आप भी बड़े बेसब्रे बड़े उतावले हुए जा रहे हैं हमसे बात करने के लिए और लिसनर्स तक अपने जज्बात पहुंचाने के लिए। हमारा नंबर है जनाब, क्या हमारा नंबर है जनाब? 03000113488। तमाम के कॉल करे सको था आई शाम 7 बजे ताई मां तमाम सभी दोस्त संग आया वठो था शोजी पहली पहली कॉल दिसो था लाइन ते आहे आखिर के। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम अस्सलाम जनाब, केर असा सबनी सा गडई किथा प्या गलायो? पनो अंकल खाई दर भा, केड़ा हाल चाल? तब ठीक ठाक आयो? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। दा तमा यू बुधायो त तमा छा कंदा आयो मुजा जानी? माशाला माशाला, गर्मी में कोई प्रॉब्लम तो कोन थी? गर्मी में पोख करण दाढ़ी दुखियाई थी होंगी? अच्छा, तो छा था पोखियो इन वक्त जमीन में? माशाला माशाला माशाला, तो घणो हे टाइम खाइंदी माना घणे अरसे में तैयार थी वेंदी? अच्छा, माशाला माशाला माशाला। इंदर साहब, यो बुधायो तो तमा असान शो में आया आयो, तमा के केड़ो गानो आज बुधनो आहे? शमन मीराली जो कोई भी तक बुधायूं था इंशाल्लाह, कैं नाले से करना चाहो? थैंक यू सो मच इंदर भाई, पांजो खास ख्याल रखो। अदा थैंक यू, हमारे साथ थे जना बहुत प्यारे से इंदर भाई और आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। आई इन गर्मा गर्मी में जेका है, तमा अगर लॉन्ग ड्राइव थे आयो या शहर का बाहर निकल आयो या पांजे शहर में वनो था, तो तमा जनाब पांजी गाड़ी में असा के हलाए करे यानी कि जी एफ एम एच ट्यून करे असा के बुधी सको था इजीली। आई जनाब पांजी फरमाइश भी पूरी कराए सको था। नंबर आहे जनाब 03000113488। इन नंबर ते तमा असा के कॉल कयो आई जनाब पांजी फरमाइशी सॉन्ग बुधे सको था, पांजी हाल दिल असा के बुधाए सको था। आई जनाब टेम्परेचर जी मां तमा के गाल कई, टेम्परेचर इन वक्त 41 सेंटीग्रेड हले तो शाम 6 बजे कुछ मौसम सुठो थे जो अंदेशो आहे, प्रेडिक्शंस आहिन महकमे मौसमियात जी। हाने दिसो था शाम 6 बजे मौसम किए तो थे छो तो बारिश जी प्रेडिक्शन तो मौजूद आहिन, बारिश करे थी ती असा के खबर कोने पर थींदी जरूर इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम
0: सर, केर अदा सा सबरी सा गड?
1: सर मुझे नाले इरफान आहे सखर खां।
0: इरफान भा सखर खां
1: जी जी,
0: केड़ा हाल चाल इरफान भा? छा कंदा आयो?
1: अल्हम्दुलिल्लाह।
0: छा कंदा आयो, केड़ो कमकार कंदा आयो? कम न करण भी वो कम सोचो अव तो मन अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा सही है सही। इरफान भाई बुधाओ प्रोग्राम तक तो लगे?
1: प्रोग्राम जबरदस्त।
0: हाँ जबरदस्त प्रोग्राम में हाँ असा पेरे भाजी फरमाइश से प्ले क्यों था शमन अली मिराली जो गानों तो कैसे नाले से करना चाहो? पांजे दोस्तन दे नाले ठीक है। इरफान भाई खास ख्याल रखो था, थैंक यू। हमारे साथ इरफान भाई फ्रॉम सखर, आप भी हमें कॉल कर सकते हैं जनाब और हमारे साथ प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। खैर जनाब असां गाल कैसे मौसम जी, तो मौसम छा थींदो आ जनाब? मौसम गरम गरम लगो पियो आ, छा क्यों हाने पर मौसम के गरम करण में असो इलाही हथ हों छो तो मौसमियाती तब्दीलियों जो है पूरी दुनिया से रोनमा थन्दू आन पर असे जरिए थन्दून तो असा बिल्कुल विफरी वेंदा आयो, असा वण भी कटे छदा आयो, असा सब्जो कटे छदा आयो, माना इन में अद हथ असो हों तो असा कि माहौल के खराब था क्यों असा माहौल के खराब कंदा आयो तो जारी गाल गर्मा गर्मी वी वी है, मौसमियाती तब्दीलियों असा तमाम घड़ो बुरो असर विझंदून असा के खपे तो असा वण जो है लगायूं और पैं माहौल के साफ सुथरों क्यों वो शो की नेक्स्ट कॉल दिसूं लाइन सभी संगत केर आए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मिठा केर असा सभी सॉरी मुख्य आवाज ती समझ में आई तुम नालो बुधाव था सुमर महर सुमर साहब छाल था छाल आए पनवाकल में छा कंदा आयो?
2: हेलो
0: जी जी हेलो ओए अनफॉर्चुनेटली कॉल ड्रॉप थी भैया है, पर कोई गाल ना है, तवां संगे कॉल करे सको था जनाब असा जे नंबर ते। आई अगर कंजी बर्थडे आ है, कंजी शादी वादी भी थे थी, तो तवां संगे कॉल करे सको था। आज कोई तवां जे लाई स्पेशल डे आ है, तपो असा तवां संगे कॉल करे सको था, डेडिकेशन करे सको था, आई पांजे प्यारन के जनाब गाना भी डेडिकेट करे सको था। खैर जनाब हम बात कर रहे थे मौसमियाती तब्दीलियों की, तो मौसमियाती तब्दीलियां जो है पूरी दुनिया पे असरअंदाज हो रही है जनाब, और इन्हीं मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से जनाब बहुत सारी चीजें हमें देखने को मिल रही हैं कि किस तरह ये चीजें हमारे मुल्कों पर, हमारे शहरों पर असरअंदाज हो रही हैं। तो दरख्त लगाइए, सब्जा ही सब्जा कर दीजिए पूरे सखर को, और नीम के दरख्त जो है लगाइए, क्योंकि वो बहुत गर्मी ऑब्जॉर्व करते हैं और बहुत अच्छा फील देते हैं। लेते हैं शो की एक और कॉल। अस्सलाम वालेकुम। अदा मुझा मिठा केर असा सबनी सा गद मिसरी गोठ का मिसरी जेड़ा मानू असा सबनी सा गद मौजूद आइन, केड़ा हाल चाल है नदा? वाओ अब्दुल्ला शाह गाजी तो मां घुमो था माना कराची। वाह यार गुड, तमाम के तमाम घड़ी मुबारक हुए थे तमाम एडे सुठे मजार थे मना सिक्योरिटी भर्ती थे आयो, तो पो जेका है कराची जी आवाम की मना जोरा वारा या मना हली भी दिया ता जे शरण ते? कोई कहो को बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल तमाम सुठी जाए थे तमाम गार्ड थे आयो, असा दुआ थे तमाम हमेशा तरक्की मानो, तमाम हमेशा खुश रहो, असा के लिए भी उते दुआ जरूर कजो। जी जी जी
1: पठान खान पटेर मोहम्मद अली मार
0: सही सही सही
1: गोरा भंगोरा प्रोग्राम पोपट पिता भी मोर पिता भी ओके
0: अच्छा बुधो तो सही है पठान पटके वारो असो तमाम घणो पुराणो लिसनर आ अच्छी छो न तो असंगे कॉल छो न तो करे प्रोग्राम में का देबो
1: बस यार अला कंदो कदी न कदी काम कंदो
0: असा इनके टिकटॉक ते अमूमन दिसदा आयो। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अदा बिल्कुल जनाब तुम भी असें कॉल कर सको था, इन सुठे मौसम के वधिक सुठो करे सको था, जो था असा चाहूं था ताजी कॉल के थ्रू सुठा मौसम वधिक सुठा थी वजन आई तमा असा सबनी सा गरे चोनो वठो था शो दी नेक्स्ट कॉल। अस्सलाम वालेकुम, केर असा सबनी सा गरदा? हेलो
2: जी
0: तमा जो नालो बेटा?
2: मुझे अदा सुमेरा।
0: सुमेरा सुमेरा बेटा किथा कॉल किया था असा के?
2: रोड़ी मां कई।
0: रोड़ी मां, रोड़ी वाला सब खुश लगा प्यान?
2: जी जी अल्हम्दुलिल्लाह।
0: सुमेरा छा हाने ताजी कॉल आई आ, मां ताजी कॉल हाने रिसीव कई आ है, जरी तवां जी कॉल आई थिंक बिजी असा जो नंबर हुंदो आ तो असा न खरी सकदा आयो। सुमेरा छा कंदा आयो ता? सिलाई कंदा आयो? सिलाई। हेलो माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। सुमेरा तां ये बुधायो त तां के असा जो प्रोग्राम के लगंदो आ जबरदस्त। सुमेरा ये बुधायो त शमन जो गानो प्ले करण वारो आया, के जे नाले था करण चायो?
2: तां जी नाले
0: से। अच्छा थैंक यू सुमेरा, पांजो खास ख्याल रखजो। हेलो सुमेरा सा सबनी सा गड हुई जना भाई, सुमेरा जिला आई असा जे पेरियो पेरियो जेको कॉलर होयो उने दोस्त जी फरमाइश से असा प्ले कयो ता हाने जबरदस्त ट्रैक जेको आहे शमन अली निराली जी जबरदस्त वॉइस में, दिलन जा मालिक वाला मुझे यार जी पारत थई न सॉरी सॉरी यो न तव नथो विसरी तव इने गाने के बदो आई खोर सारन जाय कयो।

0: का सूफी ठिकाना
1: फातिह मेहरान सिंध की एक और पहचान
0: जीए एफएम 88 नेटवर्क
1: सिंध की आवाज।
2: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम।

0: तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिससे मिनरल्स स्किन में फॉली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: छा तव भी पैं ख्वाबन जो घर एक अड़ी जाए थे।

0: छा अव्हां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लॻे थी, हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो। पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम, अव्हां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अव्हां खे रेडियंट लुक, रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट। हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एज ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एज ब्यूटी सोप। वाइट एज ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गीअ सां गॾु। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
1: खुशखबरी खुशखबरी, साफ़ ऐं शिफ़ाव पाणी सिहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
2: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो, मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड,
1: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल,
2: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
1: उन खां अलावा असां वटि रिफिल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
2: अव्हां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे, अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे,
1: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार, शादी ऐं ॿियनि तकरीबन लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
2: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
3: अमर सिंध जे सींध में हिकु चमकंदड़ सितारो,
4: डुखोयल इंसानियत जी ख़िदमत जो बहितरीन मिसाल।
3: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद,
4: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां राति जो 10 बजे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदी।
3: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि, हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
4: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
5: कैश ऐं किस्तनि ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड, मातली।
6: खुशखबरी, अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में अव्हां जो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं, सलीम कॉलोनी, टंडो गुलाम अली रोड, मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा, CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण, औरतनि जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण, बांझपन।
3: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी, हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। यादि रखनि निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT, लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी, मोबाइल नंबर 2310-31-43-842।
7: छा अव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो?
5: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
7: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
5: हाँ गोठन शहरन परे परे ताई बुधो वींदड़ रेडियो जीएफए मातली बदीन
7: बस पो हाने खणो फोन पेंजे इश्तिहार हलायण लाए
5: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सा हिन नंबर ते राब्तो कंदा
7: 03125257 86
5: जी हाँ 2315525786
7: जीएफएम रेडियो नेटवर्क
5: सिंध जो आवाज़।

हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: ये लेके गए हैं वो बेचारा, वो ये भी कोई नशा ही होगा पकड़ के उसे मार मार के। ये टैंक देख रहे हो, ये टैंक इनका अपना टैंक है, इसको चला के वीडियो बना के, ये जबीला साहब इनके स्पोक्स पर्सन है काबिल इज्जत, ठीक है ना। और ये कह रहे हैं कि जी हमने हैं जी जी जी जी नहीं नहीं दे आर ऑलवेज दे प्रोवाइड लॉट ऑफ अम्यूजमेंट डोंट वरी। अच्छा अब ये जो सा है ये तो है इनकी कार्रवाई, ठीक है। अब ये हमें, ये भी मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो एक्चुअल सवाल है ना, वो जो पूछना चाहिए ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन को, वो ये है कि क्या अफगानिस्तान के अंदर इन्होंने दोहा एग्रीमेंट की पासदारी की है, क्या इन्होंने वहां खवातीन को हकूक दिए। उसको अगर आप नहीं कर रहे एंड यू आर ट्राइंग के जो टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को जो हिट करें एंड यू आर ट्राइंग टू शो इट एज के हमने किसी अस्पताल को हिट कर दिया है, तो व्हाई, व्हाट इज द एजेंडा हो रहे है। एंड देन द ब्यूटी ऑफ द टाइमिंग्स कि अचानक बैठे बैठे क्यों ये इतना शौक आया, उसके ताने बाने भी कहीं और मिलते हैं ना कि चलो जी।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
2: खुशखबरी साफ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
3: अवां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड
2: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर 500 मिलीलीटर 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल
3: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
2: उन खां अलावा असां वटि रिफिल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
3: अवां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अवां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे
2: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार शादी ऐं ॿियनि तक़रीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
3: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर वेझो सोनेरी बैंक बदीन रोड मातली।
4: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
5: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
4: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद
5: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां राति जो 10 बजे ताईं मरीजन जो इलाज कंदी।
4: औलाद जो न थियण औरतुनि जे मख़सूस बीमारियुनि हई में सूर चेल में सूर रत जो घटि थियण कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
5: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
6: कैश ऐं किस्तनि ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छिटियूं लॻाइण लाइ ख़ुशख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितियूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितियूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
7: ख़ुशख़बरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण औरतुनि जी मख़सूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण बांझपन।
4: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। याद रख निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी मोबाइल नंबर 2310-31-43-842।
8: छा अव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो
6: त पोए GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
8: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
6: ऐं हा ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
8: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
6: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
8: 03125252786।
6: जी हा 2315525786।
8: GAFM रेडियो नेटवर्क
6: सिंध जो आवाज़।

0: के हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क सिंक की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: तीन पर क्या बात है, बहुत प्यारा सा गाना हमने आपके समातों की नजर किया। मौसम बाहर का हमारे यहाँ तो थोड़ी सी हवा चल रही है, लेकिन इतनी ज्यादा हवा नहीं है और ना आसमान पे कोई बादल मौजूद है, लेकिन जहाँ कहीं पर भी हैं वो मौसम को एंजॉय करें, बादलों को एंजॉय करें और जनाब जबरदस्त तरीके से अपनी जिंदगी को जिए और हमारे शो को एंजॉय करते रहें। लेते शो की एक और कॉल, देखते हैं लाइन पर हमारे साथ कौन है। अस्सलाम वालेकुम। जी जनाब, कौन हमारे साथ मौजूद?
1: भाई आप पहचानो नहीं, कौन आपसे पता था?
0: मेरे साथ कौन है, कौन है जनाब? खोसो साहब हैं और मुझे नाम भूल जाता है अमूमन।
1: यही तो मसला है ना, आप नाम भूल जाते हैं।
0: जख्मी खादिम हुसैन खोसो।
1: हाँ बिल्कुल सही है साहब, पहचाना।
0: क्या बात है जनाब, मेरा तुक्का बिल्कुल ठीक जाके लगा, तीर निशाने पे जाके लगा।
1: आप निशाने पे तीर लगा जाते हैं, आपका निशाना गलत नहीं जाता
0: है। अरे सच कह जाऊँ, क्या हाल है आपके जख्मी भाई, ठीक ठाक हैं?
1: बिल्कुल बिल्कुल सही है, आप बताएं कैसे हो?
0: अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताएं क्या हो रहा है आजकल और कैसा चल रहा है आपकी जिंदगानी?
1: बिल्कुल अच्छा जिंदगानी चल रहा है, बिल्कुल फर्स्ट साल चल रहा है। और मैं भी कराची था, अभी वापस आ गया, कल आ गया वहाँ पे। तो मैं भी कराची था, कराची का मौसम सब कैसा था, कभी कैसा था।
0: हाँ
1: यहाँ पे तो बिल्कुल गर्मी है,
0: यहाँ बहुत गर्मी है। असल में कराची में बहुत बादल थे, कभी दिन को बरसात होती थी, कभी रात को होती थी बूंदा बांदी, और हवा तो अनलिमिटेड चल रही थी ना।
1: हाँ बिल्कुल, यही बात है। हाँ
0: तो ये बताइए, आपको हमारा शो कैसा लग रहा है आज?
1: बिल्कुल फर्स्ट कल लग रहा है, मैं भी छुट्टियां दे रहा हूँ, तुम भी छुट्टियां दे रहा है। तकरीबन एक महीना हो गया, डेढ़ महीना हो गया आपकी आवाज सुनने के लिए, काम भी करते
0: हाय।
1: मैंने बोला यार कब आएगा, कब उससे बात होगा।
0: हाँ थैंक यू, हम आ चुके हैं देखें आपके साथ और अब आपका हमने इंतजार खत्म कर दिया। ये बताइए कि अब आपने कौन सा वाला गाना सुनना है हमारे साथ?
1: गाना तो मैं आज आपके पसंद से सुनूंगा।
0: मेरी पसंद पे
1: शमन का कोई भी सुना दो आप।
0: शमन का, ओके ओके ओके, शमन का कोई भी। शमन का तो वैसे मैं चला लिया, मैं अपनी पसंद पे चलाता हूँ आज कोई आपके लिए।
1: हाँ आपने अपने पसंद पे चलाओ, जो तुम्हारा पसंद है वो हमारा पसंद है।
0: ओके थैंक यू सो मच। और ये बताएं कि किसके नाम करना चाहेंगे?
1: जी मेरे कुछ दोस्त हैं, मेरे कराची से बैठे हैं दो, आदम खोसो और मुनीर खोसो।
0: सही सही।
1: और मेरे दोस्त हैं अब्दुल जबार खोसो, इमदाद खोसो, बख्तियार खोसो।
0: अच्छा ठीक ठीक ठीक। और किसी को कोई पैगाम देना चाहेंगे, डेडिकेशन करना चाहेंगे किसी को?
1: नहीं नहीं अभी तो अब नए नए आए, किसी को डेडिकेशन किसी को मैं आज किसी को क्या दें यार। अभी तो अपने आप को ही, अपने आप को ही है बस।
0: सही सही सही सही सही सही सही सही, बिल्कुल बिल्कुल ठीक। आदा थैंक यू सो मच जख्मी भाई, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।
1: मेहरबानी
0: मेहरबानी, ओके थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हमारे साथ जख्मी खादिम हुसैन खोसो साहब और जनाब आप भी हमें कॉल कर सकते हैं हमारे नंबर पर। लेते हैं शो की एक और कॉल, देखते हैं लाइन पर हमारे साथ कौन है। ओए होए होए, कॉल ड्रॉप हो चुकी है। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम, क्या कह रहा, खुश आयो?
0: ठीक ठाक मुझे प्यारा भाग, खेर असा सबनी सा गड़ो?
2: अल्लाह खुश कंदा
0: केर असा सबनी सा गड़ो? माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अब्दुल रज़ाक जुनेजो साहब, के हाल चाल, तब ठीक ठाक आए हो? कितना मना ड्रिगपुर खां
2: कचे मन मिर्दापुर को हेठा आया।
0: अच्छा गोडा गोडा गोडा, जुनेजो साहब छा कंदा आयो?
2: पोक पांजी कना बनी बारो आए।
0: माशाल्लाह माशाल्लाह, की हले तो ताजो कामकार?
2: शुक्र है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह,
0: जबरदस्त जबरदस्त। यो बुधायो तो ता के से शो के लगंदो आ?
2: शो प्यारो लगंदो आ, ता नसरा थोड़ी कम थी अचे,
0: सिग्नल प्रॉब्लम हुंदी का?
2: अगे मूड भली इंदी हाणी घटी थे बटे महीना थी आता।
0: अच्छा पो ऐसा पांजे टेक्निकल जेका हे कंसर्न डिपार्टमेंट उनसा राबतो कयूं ता दिसूं ता ता छो नथी अचे?
2: हा ता घणो ए लाड़कानी ए नचा भली जे बोना ते ता बदों ता आज फेरो
0: करा। अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा, इंशाल्लाह इंशाल्लाह ता जे सही अची वेंदी। तमा यो बुधायो ते जे कोने मा मुमताज लाशारी जो गानो तो प्ले किया, सिर लगे सोहणे सजण सा सिर लगे, केंजे नाल थकण चायो?
2: नाले वही तो जतो ये नाले दा कयो वफा।
0: अच्छा सिर्फ?
2: हाँ बस प्यारो मान लगे तो हर प्रोग्राम कॉल करे तो।
0: हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
2: हाँ असा प्रोग्राम बुधंदा आयो मुकम्मल घणा ही बुधंदा आयो, बताए कॉल घट लगंदे वो कॉल घट करना।
0: अच्छा सही सही, नना तमा बुधंदा आयो ये असले खोड़ आए तमा सके असन
2: दा।
0: हाँ जबरदस्त जबरदस्त, जुनेजो साहब ये ही बुधंदा
2: वन वन टू तो हो नी तभी बुधंदा आज ता प्रोग्राम।
0: वाओ ग्रेट यार, 106.2 ते जे कम आउ दो हम।
2: हाँ ना ते बुधंदा।
0: हाँ थैंक यू जुनेजो साहब, ताजा कुर्ब घणा। थैंक यू सो मच, थैंक यू जुनेजो साहब। हमारे साथ है बहुत प्यारे से जुनेजो भाई, और जुनेजो भाई के बाद अब लेते हैं शो की एक और कॉल, देखते हैं लाइन पर हमारे साथ कौन है। आप हमें कॉल करें जनाब और हमारे साथ शो में पार्टिसिपेट करें, क्योंकि शाम के 7 बजे तक हम आपके साथ हैं, 5 बजे तक तो हम आते हैं। 03000 और 01138 03000 01 3488 हमारा नंबर है, लेते हैं शो की एक और कॉल, देखते हैं लाइन पर कौन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम सलाम, अशरफ किरालन कुशयो।
0: अल्हम्दुलिल्लाह, खैर असा सबनी सा गड।
3: मेरा मानू कुर्बान अली हासिल जो बने वो ठाडी गुलाम का।
0: क्या बात है कुर्बान भाई की, कुर्बान भाई कैसे हैं आप? हाँ बाकी दखण जी तो तमाम घणी सुठी हवाओं तां दे हलन पियूं, असा दे घट घट पी हलन।
3: हाँ बिल्कुल, लाड़ के इलाको साजी पट्टी गरजे थी ना, इलाको गद लगे तो नहीं कर आऊं जी कुछ छुट्टी लगे।
0: हाँ एग्जैक्टली एग्जैक्टली। कुर्बान भाई ये बुझायो ता जे को आया ता जे गर्मी घट थी वही आए।
4: मेहरान की सकाफत से गुंदा हुआ मोर को दिल्ली राणा, मोर को दिल्ली आवाज की डोर से बंधा हुआ
5: GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
6: हम सिंध में रहने वाले सिंधी मेहमान नवाज हैं सारे।
7: खूबसूरती है जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम, इन में मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ बिंदीहन में। डार्क स्पॉट्स के करे खत्म और दिए कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर डी जोशो। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
8: अवाजे पैंजे शहर मातली में अवाजो जातल सुनातल निजामानी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे सामू सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली। डॉक्टर अजा मुस्तफा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण औरतन जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं बार जो न थियण बांझपन।
9: डॉक्टर अजा मुस्तफा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोजानो मरीजन जो इलाज कंदी। याद रखे निजामानी मेडिकल सेंटर अवाम जी खिदमत लाए 24 कलाक खुलिल रहंदो। निजामानी मेडिकल सेंटर ते OT लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलत मौजूद आहे। निजामानी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाए एडमिन नाना सोलंगी मोबाइल नंबर 210-31-43-842।
10: खुशखबरी साफ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
11: अवांजे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड
10: जेको पेश करे तो 330 मिलीलीटर 500 मिलीलीटर 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल
11: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
10: हुन खां अलावा असां वटि रिफिल जी सहूलत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
11: अवां जे इत्माद के कायम कंदे अवां जी ज़रूरत जो ख्याल रखंदे
10: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार शादी ऐं ॿियनि तकरीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
11: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर वेझो सोनेरी बैंक बदीन रोड मातली।
12: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
13: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
12: अम्मा आयशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
13: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां राति जो 10 बजे ताईं मरीजन जो इलाज कंदी।
12: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हई में सूर चेल में सूर रत जो घट थियन कमजोरी आई औरतुन आई बारडन जो इलाज आई अल्ट्रासाउंड कंदी आहे आई नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वने थी आई डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
13: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधिक मालूमात लाए बुड़ी 247-3141-200। कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरन जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अवां चाहियो था अवां जे घरन जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
14: छा अवां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो
13: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
14: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
13: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
14: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
13: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
14: 03132525786।
13: जी हा, 2315525786।
14: GAFM रेडियो नेटवर्क
13: सिंध जो आवाज़।

0: जी साईं लालकण जा बिल्कुल बिल्कुल जीअं तव्हां ॿुधा आहिनि ईअं ई मिठा ऐं माना बहितरीन सोढ़ा हूंदा आहिनि, ॿिए जा त असांजी मिठा आहिनि।
1: जी जी जी बिल्कुल छो त मां लड़काण में इलाही कमु थियो त असांजे वटि बहिराम जो तुई हूंदो हुयो त असांजो तमामु घणो प्यारो भाउ उहो असांखे ॿुधाईंदो रहंदो हुयो लड़काण जे बारे में ऐं जैतून बि खणी ईंदो हुयो।
0: उहो त हाणे बि आहे न?
1: हा उहो हाणे बि आहे, बहिराम उते आया। अलाह केरु कंदो छो अलाह हुनखे लंबी जमात ॾींदो। बिल्कुलु बिल्कुलु बिल्कुलु त मां हाणे मुमताज लशारी हलाइण वारो आहियां, कंहिंजे नाले करणु चाहियो
0: साईं? तव्हांजे नाले ऐं आरजे रुखसार आरजे तव्हांजी पूरी टीम जे नाले मौला तव्हांखे ख़ासि आबाद रखंदो।
1: थैंक यू सो मच वकार भाउ, थैंक यू सो मच,
0: तव्हां बि
1: थैंक यू सो मच अदा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। वकार भाई हमारे साथ मौजूद थे फ्रॉम लाड़काना, और लाड़काना से वो कह रहे हैं कि हम अपनी जमीन को जब काश्त करते हैं, रोंबे शोंबे करते हैं तो बहुत गर्मी लगती है, तो अल्लाह ताला से यही दुआ कि आपकी गर्मी शर्मी कम कर दे और आपकी जमीन में अल्लाह ताला इतनी बरकत दे, इतनी बरकत दे आपकी फसल में कि आप बहुत खुश हो जाए और आपकी ये सारी गर्मियां भूल जाए। लेते हैं शो की एक और कॉल, देखते हैं लाइन पर हमारे साथ कौन है। अस्सलाम वालेकुम।
0: अस्सलाम वालेकुम या अली मदद।
1: वालेकुम अस्सलाम मौला अली मदद, कौन हमारे साथ?
0: तुम्हारे साथ है आपका दोहागा सैयद गुलाब शाह बुखारी गाँव शेरमुंद माइन।
1: सैयद गुलाब शाह साहब केड़ा हाल चाल है, ठीक ठाक आ हो
0: तव्हांजी दुआऊं ने?
1: हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह। सैयद गुलाब शाह साहब यो बुधायो तो मौसम जो हाल चाल ॾियो तव्हांजे ॻोठ में, तव्हांजे इलाइक़े में कीअं मौसम आहे?
0: मौसम साईं जुड़ाई आहे, रखी रखी गर्मी थी थी वञे।
1: हा बिल्कुल वालेकुम अस्सलाम।
0: ऐं रिज़वान अलक शेख साहब खे, बाबर अली शेख साहब खे,
1: जी जी सभिनी
0: ज़वार मोहम्मद सचल छंबाणी, अली अफ़सर बाबो
1: जी
0: ऐं जेकी बि संगत ॿुधी थी उन्हनि खे असांखे सिंधी गीतनि जो चयन छा चमन अली मीराली ॿुधाए।
1: चमन अली मीराली मां तव्हांखे ज़रूर ॿुधाईंदुमि, फ़िलहाल आहे मुमताज़ लाशारी ॿुधायां चलो ठीक आ मां तांखे शमन तो बुधायां। ठीक आ केड़ो गानो बुधायां शमन जो? हा बिल्कुल बिल्कुल, केड़ो गानो बुधायां शमन जो?
0: गानो जेको तव्हांखे सुठो लॻे बहितरीन शमन उहो ॿुधायो।
1: ओके मां शमन जो तव्हांखे गानो थो ॿुधायां, कंहिंजे नाले ते करणु चाहियो?
0: बस इहे जेकी संगत ॿुधाईसीं।
1: ठीकु आहे ठीकु आहे, मां हींअर थो प्ले कयां।
0: इहो कोशिशि कयो त इहो दिल वठी मूंखे धड़का न
1: ॾे,
0: इहो गानो
1: हाणे मां प्ले करे चुको आहियां। ए दिल चरी रोंदी न कर, ठहंदा नी दिल भर क्या करां, ए चरी रोंदी न कर, ठहंदा नी दिल भर क्या करां। इहो गानो ॿुधो, एंजॉय कयो। थैंक यू सो मच गुलाब शाह साहब।
0: ओके
1: ओके ओके ओके ओके। हमारे साथ है जनाब गुलाब शाह साहब और गुलाब भाई को हम सुनवाते हैं बहुत प्यारा सा गाना, इस गाने को सुनिए हमारे साथ रहिए।

0: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा, यह है मोहब्बतो यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
1: सुनते रहो GFM 90.4।

0: इन तव्हां इहो ॿुधायो कीअं हले थो तव्हांजो कमकार इमामदीन साहब? हा ज़बरदस्त, इहो ॿुधायो त जेको आहे असांजो शो तव्हांखे कीअं लॻे थो? हा बिल्कुल यार, गर्मी इलाही हुई पर अलाह साईं जो करम आहे त हाणे थोरी थोरी हवाऊं हलणु शुरू थी वियूं आहिनि। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इहा मौसमियाती तब्दीलियूं आहिनि जेका असांखे भोगड़ियूं थी पवनि। इमामदीन साहब, इहो ॿुधायो लास्ट वारो गानो मां हाणे मुमताज़ मलाई, सॉरी मुमताज़ मलाई चवां थो, मुमताज़ लाशारी जो हलाईंदुमि, छो त असांजो हिकु कॉलर आहे मामा भयो, जमाल भयो, उन चयो त हुनजी फरमाइश ते हाणे हलाईंदासीं। त तव्हां इहो ॿुधायो कंहिंजे नाले करणु चाहियो? थैंक यू सो मच इमामदीन भाउ, पंहिंजो ख़ासि ख़्यालु रखिजो। ओके ओके ओके, इमामदीन साहब हमारे साथ मौजूद थे जनाब, और इमामदीन साहब के साथ बहुत अच्छी गपशप रही। लेते हैं शो की एक और कॉल, देखते हैं लाइन पे कौन है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, केड़ा हाल चाल आहिन अदा, केर पिया गलायो, किथा पिया गलायो? सॉरी निसार भा, निसार भा, केड़ा हाल चाल आहिन, ठीक आयो? हा फर्स्ट क्लास, फर्स्ट क्लास, मजे में। इहो ॿुधायो त छा कंदा आहियो?
1: राखी पोखी।
0: माशाल्लाह माशाल्लाह, राखी पोखी जो कमु कंदा आहियो, त कीअं हले थो तव्हांजो कमु निसार भाउ?
1: राखी पोखी सही हले थो।
0: अच्छा माशाल्लाह, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। इहो ॿुधायो निसार भाउ, मुमताज़ लाशारी प्ले कयो आहे, कंहिंजे नाले था करणु चाहियो? अच्छा बस
1: जी साईं, बस
0: ठीकु आहे दादा, थैंक यू सो मच निसार
1: भाउ,
0: थैंक यू। हमारे साथ निसार भाई, और निसार भाई के बाद हम एक और कॉल ले ही लेते हैं जनाब, देखते हैं लाइन पर कौन है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा केड़ा हाल चलन था तांजा? फर्स्ट क्लास मुझा प्यारा भाई, मुमताज़ लाशारी प्ले कयो आहे, कंहिंजे नाले था करणु चाहियो? ठीक ठीक ठीक अदा, थैंक यू सो मच, पंहिंजो ख़ासि ख़्यालु रखिजो। अलाह रहम कंदो, अलाह तव्हांखे पंहिंजे हिफ़्ज़ो अमान में रखंदो, ऐं तव्हांखे बोर्ड मां कढी छॾंदो। अलाह अकबर अलाह अकबर, पंहिंजो ख़ासि ख़्यालु रखिजो अदा, इनशा ताला तव्हांखे इन इम्तिहान मां बि पार कंदो, अलाह गिदड़नि खां बचाईंदो। ठीक, थैंक यू सो मच। तव्हां इहो चयो था अला गिदड़नि खां बचाईंदो या अला गिदड़नि खे बचाईंदो? अला तव्हांखे गिदड़नि खां बचाए, आमीन सो आमीन। ऐं जिते बि रहो हमेशा ख़ुशि रहो। जी जनाब, शो को करते हैं पर वाइंड अप रखिएगा अपना, बहुत सारा ख्याल। अशफाक नियाज़ी आपसे चाहता है इजाजत, इंशाल्लाह अब हम मिलेंगे आपसे कब? नेक्स्ट फ्राइडे, और नेक्स्ट फ्राइडे तक के लिए अशफाक को दीजिएगा इजाजत, अपना रखिए बहुत सारा ख्याल, सुनते रहिए GFM88 नेटवर्क, और अगले हफ्ते के मिलने तक के वादे तक के लिए अशफाक को दीजिए इजाजत। टेक केयर, गुड बाय, नाइस डे, लव यू ऑल।

0: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: चवण ते वधी वई आहे, सूबा साॻिया ई चार आहिनि। 1972 ईस्वी में आबादी 7-8 करोड़ हुई, हाणे 25 करोड़ आहे, त कुझु सोचणो पवंदो। आबादी एतिरी वधी वई आहे जो माण्हू फ़ैसिलो कंदा त अॻिते कीअं हलणो आहे। सुठी हुकमरानी लाइ इंतज़ामी रीसेट जी ज़रूरत आहे त थियणु घुर्जे। क़ाबिल एतिराम सियासतदाननि समेत सभिनी पार्टियुनि जी बि ख़्वाहिश आहे त मसला हल थियनि। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ़ चौधरी जी न्यूज़ ब्रीफिंग। DGISPR चयो त मोहसिन नकवीअ खे हक़ हासिल आहे त पंहिंजी ज़ाती राय ॾे, ऐं इन मुताबिक़ मसला हल करे सघजनि था। अवाम जी राय वठणु घुर्जे। अवाम गवर्नेंस मां मुतमिन आहे त ठीकु, मुतमिन नाहे त आइन मुताबिक़ फ़ैसिलो कजे। पाकिस्तान जी सिक्योरिटी लाइ सुठी हुकमरानी इंतिहाई अहम आहे। मसला हल न पिया थियनि, उन जो मतिलबु आहे त सुठी हुकमरानी लाइ कुझु न कुझु करणो पवंदो। बलोचिस्तान जा केतिरा ई सरदार सिधी रीति दहशतगर्दीअ जो हिसो आहिनि। ही गैर कानूनी कारोबार जी परमट ऐं सूबे जी बजेट मां हिसो घुरनि था। चवनि था त हिसो न ॾींदो त दहशतगर्दी कराईंदासीं। उहे माण्हू लेवीज़ फोर्सिस खे बि पंहिंजी सरदारी फोर्स समुझनि था। ही चाहिनि था त बलोचिस्तान अॻिते न वधे। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ़ चौधरी बलोचिस्तान में थींदड़ दहशतगर्दीअ जा सबूत मीडिया खे ॾेखारे छॾिया। DGISPR चयो त ॼाणी वाणी तासुर पखिड़ियो पियो वञे त बलोचिस्तान जूं हालतूं ख़राब आहिनि। फितना हिंदुस्तान खे मौसर अंदाज़ में निशानो बणायो पियो वञे। दहशतगर्द अवाम खे तकलीफ़ पहुचाईंदा त रियासत बि उन्हनि ख़िलाफ़ भरपूर ऐं सख़्त कार्रवाई कंदी।

0: जवानन जी शहादत ते मौलाना जो बयान समझ का बाहर आहे। जवानन जी शहादत ते जेके गालियूं कयूं वयूं उहे भारतीय बयानीअ जहिड़ियूं आहिनि। पाक फौज जे तर्जुमान लेफ्टिनेंट जनरल अमन शरीफ चौधरी जो जे यू आई सरबराह जे बयान ते रदअमल। डी जी आई एस पी आर चयो त मोहतरम सियासतदान खे चवां थो त शऊर ॾियो, माण्हुनि खे मुझायो न।
1: नकवी साहब ने मैंने सुना था उनका बयान, मैंने आज कवर भी हुआ है मीडिया में, बहुत ज्यादा देखा है। मुझे नहीं पता कि उनके इशारा किस तरफ था। ये जो तजवीज उन्होंने दी वो घिसी पिटी तजवीज है। एक जो बहुत सारी तजावीज दी है उनमें से एक ये दी है, लेकिन ये ऐसी है जिसको कभी भी ये सिंध की सूफियों की धरती के लोग कबूल नहीं करेंगे। नौजवानों ने आगे बढ़ के इस मुल्क की बागडोर संभालनी है। वो किसी भी तरीके से कॉकरोच नहीं है, इस मुल्क के मुस्तकबिल के मेमार
0: है। सूफिन जी धरती सिंध जा माण्हू कंहिं बि सूरत में नवां सूबा कबूल न कंदा। नौजवान मुल्क जो मुस्तकबिल आहिनि, उहे काकरोच नथा थी सघनि। सिंध जे वॾे वज़ीर सैद मुराद अली शाह जो घरू वज़ीर मोहसिन नकवी जी बयान ते रदअमल। भेटशाह में मीडिया सां ॻाल्हाईंदे वॾे वज़ीर चयो त नवनि सूबनि जी ॻाल्हि का नई न आहे, पर सिंध जो अवाम इहा तजवीज़ कंहिं बि सूरत में क़बूल न कंदो। हैदराबाद सखर मोटरवे जी पैसनि जी खुर्द बुर्द बाबति शायदि गवर्नर वटि दुरुस्त ॼाण नाहे। इन मामले जी जांच थी हुई ऐं कुझु पैसा बि रिकवर थिया हुआ।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: आप सुन रहे हैं GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज, सिंध की आवाज।
2: खुशखबरी, साफ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सिहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
3: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड,
2: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल,
3: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
2: हुन खां अलावा असां वटि रिफल जी सहूलियत पिणु सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
3: अव्हां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे, अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे,
2: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार, शादी ऐं ॿियनि तक़रीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
3: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
4: अमर सिंध जे सींद में एक चमकंदड़ सितारो,
5: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
4: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुन जे बीमारियुन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद,
5: रोजानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताईं मरीजन जो इलाज कंदी।
4: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि, हीअ में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
5: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
6: कैश ऐं किस्तन ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड, मातली।
7: खुशख़बरी, अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में अव्हां जो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं, सलीम कॉलोनी, टंडो गुलाम अली रोड, मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा, CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण, औरतुनि जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण, बांझपन।
4: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। यादि रख, निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT, लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी, मोबाइल नंबर 2310-31-43-842।
8: छा अव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो?
6: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
8: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
6: ऐं हा, ॻोठनि, शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
8: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
6: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
8: 03125252786।
6: जी हा, 2315525786।
8: GAFM रेडियो नेटवर्क,
6: सिंध जो आवाज़।

0: It's 7:15 p.m.
1: This time check is brought to you by
2: White Ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
3: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज. मातली के हो तो आवाज भी मातली की है.
4: सुनते रहो GAFM 90.4.

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GAFM 90.4।

0: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: सिंध के माथे का झूमर
1: GFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
1: सुनते रहो GFM 90.4।

अपना शहर अपना घर माथली और माथली की आवाज़ GFM 90.4।

पाक फौज जे तर्जमान लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी चयो आहे त दहशतगर्दनि सां ॻाल्हाइण जी का बि गुंजाइश न आहे। दहशतगर्दनि खे हाणे समुझ में अची वियो आहे त उन्हनि सां का बि नरमी न थींदी। दहशतगर्द रियासत जे साम्हूं झुकन बि सूरत में ख़तम कया वेंदा। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी न्यूज़ ब्रीफिंग में वधीक चयो त फोर्सिस 40,348 ऑपरेशन कया आहिनि। 819 जवान शहीद थिया ऐं 2084 दहशतगर्द मारिया विया। बलोचिस्तान में 31,080, खैबर पख्तूनख्वा में 7,177, मुल्क जे ॿियनि इलाइक़नि में 2,091 ऑपरेशन कया विया। बम धमाकनि में घणे भाङे अफ़गान शहरी मुलविस रहिया आहिनि। दहशतगर्दी जे वाक़नि में 322 पाकिस्तानी शहरी शहीद थिया। मुल्क जी आबादी चवण ते वधी वई आहे। सूबा साॻिया ई 4 आहिनि। 1972 ईस्वीअ में आबादी 7-8 करोड़ हुई, हाणे 25 करोड़ आहे। त कुझु ॾिसो, आबादी एतिरी वधी वई आहे जो माण्हू फ़ैसिलो कंदा त अॻिते कीअं हलणो आहे। सुठी हुकुमरानी लाइ इंतज़ामी रीसीट जी ज़रूरत आहे त थियणु घुर्जे। क़ाबिल एतराम सियासतदाननि समेत सभिनी पार्टियुनि जी बि ख़्वाहिश आहे त मसला हल थियनि। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी वधीक चयो त मोहसिन नकवीअ खे हक़ हासिल आहे त पंहिंजी ज़ाती राय ॾे। आइन मुताबिक़ मसला हल करे सघजनि था। अवाम जी राय वठणु घुर्जे। अवाम गवर्नेंस मां मुतमिन आहे त ठीकु, मुतमिन न आहे त आइन मुताबिक़ फ़ैसिलो करे। पाकिस्तान जी सिक्योरिटी लाइ सुठी हुकमरानी इंतिहाई अहम आहे।

बदकिस्मती सां असां हार्ड स्टेट न आहियूं। हार्ड स्टेट जो मतिलब अहिड़ी रियासत आहे जिते आइन ऐं कानून सभिनी लाइ बराबर हुजे, जिते समूरा मामला आइन ऐं कानून मूजिब थियनि। हार्ड स्टेट जो मतिलब आहे त जिते को बि एलियट न हुजे। हार्ड स्टेट जो इहो मतिलब हरगिज़ न आहे त मिल्ट्री रियासत हलाईंदी हुजे।

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: अजरक के रंगों से रंगी,
2: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
1: सिंध के दिल से निकली आवाज,
2: जीएफएम 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: खुशखबरी खुशखबरी, साफ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
4: अवां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो, मिनरल वाटर ओज़ीनेटेड यूरिफिटेड,
3: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल,
4: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
3: उन खां अलावा असां वटि रिफल जी सहूलियत पिणु सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
4: अवां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे, अवां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे,
3: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार, शादी ऐं ॿियनि तकरीबन लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
4: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
5: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
6: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
5: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जी बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद,
6: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताईं मरीजन जो इलाज कंदी।
5: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि, हये में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
6: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
7: कैश ऐं किस्तन ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड, मातली।
8: खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं, सलीम कॉलोनी, टंडो गुलाम अली रोड, मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा, CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण, औरतुनि जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण, बांझपन।
5: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। यादि रख निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT, लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी, मोबाइल नंबर 2310-31-43-842। छा अव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो?
7: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
8: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
7: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
8: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
7: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
8: 03125252786।
7: जी हा, 2331-2525-786।
8: GAFM रेडियो नेटवर्क,
7: सिंध जो आवाज़।

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: Thanks for watching this video. For more updates, subscribe Shehla Gul Official.
1: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है. GFM 88 Network सिंध की आवाज.
2: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है.
1: सुनते रहो GFM 90.4.

0: दरिया सिंध की लहरों के संग रवा दवा, यह है मोहब्बतो यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: अब आपकी खूबसूरती का फैन, White Age Beauty Cream।

0: मेरा
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा वाइटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाएं, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: खुशखबरी खुशखबरी, साफ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
3: अवां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो, मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड,
2: जेको पेश करे तो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल,
3: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
2: हुन खां अलावा असां वटि रिफल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
3: अवां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे, अवां जी ज़रूरत जो ख़्यालु रखंदे,
2: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार, शादी ऐं ॿियनि तकरीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
3: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
4: अमड़ सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
5: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
4: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जी बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद,
5: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताईं मरीजन जो इलाज कंदी।
4: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि, हीअ में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
5: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
6: कैश ऐं किस्तनि ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड, मातली।
7: खुशखबरी, अवांजे पंहिंजे शहर मातली में अवांजो जातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं, सलीम कॉलोनी, टंडो गुलाम अली रोड, मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा, CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण, औरतुनि जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण, बांझपन।
4: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा, MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी, हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। यादि रख निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT, लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी, मोबाइल नंबर 2301-43-843-842।
8: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
2: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GAFM 90.4।